करके और बारात लेके जा रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभु हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते हैं। और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के चार चार हाथ हैं, किसी के दस दस पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बारातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आगे दामे, बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें, कैसे दामाद जी, नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें। नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू, डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है, बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही, दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए, और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या, अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है। अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है। ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता है, आपको इन्हीं से लेना देना, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे, अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी, चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं,
ये तो पार्वती की बातों में फंस गया। तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहनकर बाबा एकदम तैयार। अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा, दासी को कहा, अरी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोले मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखे होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो, बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको

0: मांगने आयो तू?
1: बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो कु दे दू। तू कहेगो मुकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी? क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी डर लग रहे है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊ कहा पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गयो तो? अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊ मैया आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है क्या सांपन पे नाचे हो? और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप मापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी? कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को भरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा आई, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहाँ से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे मैं अपनो काम धंधो संभाल। और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मनी मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले क्या? बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया।

जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई तो आवाज बाहर गई। अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है? तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली गोपी कहा करो? बोले रो रहे हो है तू, याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे? गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली अब कहा करे? बोले कहा करे का नजर उतारो या की? बोले कैसे नजर उतारे? बोले जा रसोई ते वो लेके आ राई नून लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे? ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली कहा बीमारी है? बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई, ओ मैया अब वह भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई नहीं तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मत ले, मैं हूं ना अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है, तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे वालों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आई चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। वो पिराजी हो गई और खुश होती होती मैया, ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी? बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहीं तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको?
गोपी बोली, मैया तो वाके रूप ते कह लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कु बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो, बता। भैया बोली, मोकु तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत, दूर जाके ठाड़ी है जी। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दी, कहीं छुरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई, और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली, हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा और हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है, कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले, क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले, लाला को देखनो। बोले, वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगो। मैया बोली, ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले, तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले, ना ना ना ना बाबा, रुक रुक जा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्ने ने थोड़ो संभाल के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले, मैया अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने, मैया तो को पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तो को पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली, बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो, अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो या के ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले, मैया तू बता तो को तेरे निया कहा चाहिए? बोले, मो को तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले, 4 दिन को तेरा छोरा है, अभी यहाँ पे
आंख खोली आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है, तो सारी ब्रज की गोपी कहे कि आपको कोई अपनी छोरी नहीं देगो। तो बाबा तू ही बता, छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है। अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब? बोले मतलब मैया, तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी। बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान कर लिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा, तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोड़ा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यही रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराज

0: 69.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है.

0: पलक। आज सोशल मीडिया सिर्फ कनेक्ट करने का प्लेटफॉर्म नहीं रहा, कई बार वही हमारे मूड और कॉन्फिडेंस को भी डिसाइड करने लगता है। लेकिन क्या ये हेल्दी है? गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और शो लेकर आ गई हूँ नया नजरिया। और आज इसी डिजिटल वैलिडेशन पर बात करेंगी मेरे साथ बीके ज्योति जी एंड बीके प्रिया जी। वेलकम मॉम।
1: ओम शांति।
2: गुड मॉर्निंग
0: ज्योति जी। हम जब भी सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड करते हैं और उस पे अगर लाइक्स कम आ जाएं या व्यूज कम आ जाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्या हमने अपनी वैल्यू को लाइक्स और व्यूज से मेजर करना स्टार्ट कर दिया है?
1: आज की डेट में कहें तो ये बिल्कुल राइट बात है कि आज लोग लाइक्स और फॉलोअर्स और जितनी हम रील्स बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि लोग हमें लाइक्स दें, क्योंकि जितने लाइक्स जाएंगे उतनी ही फिर हमारे फॉलोअर्स भी जितने बढ़ेंगे हमारी इनकम उतनी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी होती है वो इसलिए नहीं है कि लाइक्स कम आ रहे हैं, कई बार इसलिए भी होती है कि हमारी शायद इनकम अब कम हो जाएगी। तो अगर हम लोगों के ऊपर, पहले तो मैं अपना अगर व्यू मेरा जानना चाहें तो ये रील्स में हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ख़त्म करते जा रहे हैं। लोगों के बीच में खुद उतर कर देखें, ना कि इन रील्स में फंस जाएं। अपने जीवन को ऐसा बेहतरीन बनाएं कि लोग आपके जीवन को लाइक करें, ना कि आपकी रील्स को।
0: बिल्कुल।
1: और रील्स के अनुसार ही हमारी जिंदगी नहीं है, और हम अगर उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमें लाइक्स कितने मिल रहे हैं, फॉलोअर्स कितने हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेबल हैं। और ये सारी चीज़ें, डिपेंडेबल चीज़ें जितनी भी होंगी, अगर मेरी खुशी किसी पर डिपेंड करती है तो वो थोड़ी देर के लिए होगी, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन पे बिजी रहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं है उनके पास टाइम और अपने ही कामों में बिजी है। तो ज़रूरी नहीं कि जितने लाइक्स हैं तो हमें वो, हमने रील अच्छी बनाई है या हमने बहुत, अगर मेरे को लाइक्स कम मिल रहे हैं तो रील खराब बनाई है। हम अपना बेस्ट देने का, अगर बना ही रहे हैं तो बेस्ट दें, लेकिन उससे अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करें, अपने मूड को खराब नहीं करें। अपना मूड आपके अपने हाथ में है। कोई भी व्यक्ति आपको बेस्ट आप दे रहे हैं, आपको खुद को फेथ होना चाहिए कि मैंने जो दिया है वो बेस्ट दिया है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: लीजिए पलक।
1: सोशल मीडिया पर हम सिर्फ अपनी लाइफ शेयर नहीं करते, उस पर मिलने वाले रिएक्शंस का भी वेट करते हैं। प्रिया जी, पोस्ट करने के बाद बार बार लाइक्स और कमेंट चेक करना एक्साइटमेंट है या वैलिडेशन की नीड?
2: बिल्कुल, ये एक हैबिट ही हो गई है और ये हैबिट जो हमने खुद डेवलप की है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा सोर्स है जो हमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता है और हर नोटिफिकेशन हमें लगता है कहीं हमारे लिए हमारी शेयर जो कहीं शेयरिंग हुई है, लाइक्स मिले हैं, तो हम उसको चेक करने लग जाते हैं क्योंकि मुझे मेरी अप्रोच कहाँ तक जा रही है, मेरी लाइक्स कहाँ तक बढ़ रहे हैं। वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे हर एक व्यक्ति लाइक करे, तो इसलिए मैं सबसे ईजी एक्सेस क्या है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में मैं अपना कोई भी कंटेंट डाल रहा हूँ और हर पल अगर मैं सेकेंड बाय सेकेंड चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं वहाँ डिपेंड हो रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इंटरनली फुलफिल हूँ, इंटरनली आई नो माई पर्सनैलिटी इज वेरी स्ट्रांग और मैं बहुत अच्छा व्यक्तित्व रखती हूँ, तो मुझे इस तरह की डिपेंडेंसी या इस तरह की नीड नहीं होगी। लेकिन इस चीज की अगर मिनट मिनट पे, हर सेकेंड सेकेंड पे मैं अगर मोबाइल टटोल रही हूँ, तो ये धीरे धीरे

0: मेरा नाम डॉक्टर शिलाखा चमन है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट हूँ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी में। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वैक्सीनेशन का मतलब है हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन किसी भी बीमारी से। जिस बीमारी से हमें प्रोटेक्शन चाहिए उसके खिलाफ हम वैक्सीन देते हैं। उससे क्या होता है, छोटी सी थोड़ा सा जीवाणु जो कि बीमारी नहीं कर सकता बच्चे को दिया जाता है, उससे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इम्यून सेल्स में मेमोरी रहती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब असल जीवाणु उसको इन्फेक्ट करे तो वो उसके खिलाफ लड़ सके। तो वैक्सीनेशन सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता। बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा हो फिर भी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती। नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक इम्यूनिटी है जो हमें सभी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हमें हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम पहले से सचेत हो किसी भी बीमारी के खिलाफ तो वो अच्छे से लड़ सकता है उस बीमारी से। इसीलिए हमें बच्चा बिल्कुल ठीक हो फिर भी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: स्माइल गाइस, वन मोर सेल्फी।
1: हर याद हम फोन में सेव कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी उन हीरोज के लिए भी कुछ किया जो हर दिन हमारी खुशियों की सिक्योरिटी करते हैं? इस इंडिपेंडेंस डे एक सेल्फी नहीं, एक लेटर लिखिए। 89.6 रेडियो महारानी लेकर आ रहा है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। अपना पैगाम हमें भेजिए और हम उसे सोल्जर्स तक पहुंचाएंगे। सबमिट एट रेडियो महारानी ऑफिस, NIT5 फरीदाबाद, नियर DCP ऑफिस, या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए @ रेडियो महारानी 89.6।

0: तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
3: नया नजरिया विद आरजे पलक।
4: हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों के रिस्पॉन्स से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर रिस्पॉन्स ही ना मिले तो क्या खुशी भी कम हो जानी चाहिए? ज्योति जी, अगर लाइक्स और फॉलोवर्स का काउंट ही ना दिखे तो क्या हम फिर भी सोशल मीडिया पर उतने ही एक्टिव दिखेंगे जितने पहले थे?
5: अगर मेरी बात करें तो मैं तो वही करूंगी, और इसका कि उतनी खुशी रहेगी क्योंकि उसमें फॉलोअर्स या लाइक्स के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपनी यादों को संजो रहे हैं, हमने जो भी अपनी यादें रही वो इंस्टा पे हमने अगर कोई अकाउंट बनाया है या रील बनाई या फेसबुक पे कुछ डाला भी हमने, तो ज़रूरी नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, लाइक्स के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी कुछ यादों को, अच्छे पलों को संजो के रखते हैं।
4: बिल्कुल।
5: अगर वो इन केस अगर वो हट जाता है, अभी कुछ दिन पहले मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि मेरे ही YouTube मतलब जो WhatsApp से सारे ही मैसेजेस और सब कुछ डिलीट हो गया क्योंकि उसको रीइंस्टॉल कर दिया। तो उस समय थोड़ा सा ऐसा लगा कि क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट्स भी उसमें चीज़ें थी जैसे स्टडीज से रिलेटेड थी, उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन उसमें मूड ऑफ नहीं हुआ। ये स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी थैंक्स है कि जिसके द्वारा ही हम उसको रोक पाए कि नहीं ये ज़रूरी नहीं। हाँ, ऑप्शन ढूंढा कि वो चीज़ मुझे कहाँ से फिर मिल सकती है, तो वो जहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और वो चीज़ दोबारा आ नहीं सकती तो मैं उसके बिहाफ पे अपनी खुशी क्यों जो कहीं गंवा दे, अपनी खुशी को क्यों हम छोड़ दे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें और ये सब चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये चीज़ बड़ा अच्छा सिखाती है कि कुछ टाइम के बाद कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। जब हम ही परमानेंट नहीं है तो फिर ये चीज़ें परमानेंट कैसे रह सकती है? तो हमारी इन चीज़ों पर खुशी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशी हमारी अपनी यादों में है। अगर वो पल हैं, बहुत अच्छे पल भी हमने बनाए हैं, तो मेरी यादों में तो रहेंगे ही सदा, चाहे हम इंस्टा से हट जाएं या फेसबुक से हट जाएं, लेकिन मेरी यादें जब भी हम उसको याद करेंगे तो मेरे चेहरे पर वो खुशी जरूर आएगी।
4: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

89.6 रेडियो महारानी पर 1947 वापस आ रहा है। कब, कहां, कैसे, जल्द पता लगेगा।

0: डिजिटल दुनिया का हिस्सा रहना जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से अपनी वैल्यू भूल जाना नहीं। प्रिया जी, अगर हैप्पीनेस सोशल मीडिया के रिस्पॉन्स पर डिपेंड हो जाए तो इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें?
1: ये बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी उस साइकिल में कहीं कहीं फंसे ही चले जा रहे हैं। और हमारी आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल ही, जो हम देखते हैं कि छोटा बच्चा दूध भी पी रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसे मोबाइल चाहिए, कुछ ना कुछ रील्स चाहिए, वीडियोस चाहिए। तो इससे निकलना हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। और उसके लिए मैं तो ये कहूँगी कि हम सबसे पहले जो मेरा हॉबी है या जो मेरा पैशन है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा थोड़ा फोकस करें। अगर मेरे को गार्डनिंग है या ट्रैकिंग का है तो गो विदाउट द मोबाइल, एंड इफ मोबाइल इज नेसेसरी देन टेक इट, लेकिन उसको उतना ही यूज करें जितना यूजफुल हो सकता है। और मेडिटेशन का कंसेप्ट मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो मैं कहूंगी थोड़ा मेडिटेशन हम जरूर करें। वो मेडिटेशन आप कैसा भी, कहीं भी, कभी भी करें, चाहे वो किसी भी रीति का करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन आपका सेल्फ वर्थ आपका इंक्रीज करता है। आपकी आंखों में आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगती है, आप खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं। वो फिजिकली नहीं होता है लेकिन इंटरनली होता है।
0: बीके सिस्टर, थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
1: ओम शांति। थैंक यू
0: दोस्तों। लाइक्स और फॉलोवर्स आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा सकते हैं, आपकी वर्थ नहीं। अपनी वैल्यू का मेजर थोड़ा दुनिया से हटाकर खुद के अंदर भी देखिए। फिर मिलेंगे नया नजरिया में एक और नए टॉपिक और नए नजरिए के साथ। बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

मेरी राखी के बंधन को निभाना। आज किस किस ने गाना गाया, और अगर नहीं गाया ना तो भाई गा लेना, बिकॉज आज हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने वाले हैं। और रक्षाबंधन से पहले ना भाई बधाइयां दे देती हूँ वीकेंड की। वीकेंड में आ चुके हैं फाइनली, जिस दिन का था इंतजार ना आखिर वो घड़ी आ गई है। और जब ये घड़ी आई है ना तो अपने साथ लेकर आइए फेस्टिवल वाली वाइब, बिकॉज आज ना वीकेंड के साथ साथ बहुत ही प्यारा दिन है, भाई बहन की नोक झोंक को डबल कर देने वाला दिन है, अपने प्यार को सेलिब्रेट करने वाला दिन है, बॉन्डिंग को सेलिब्रेट करने वाला दिन है। और टॉम एंड जेरी वाला जो रिश्ता है ना वो आज के दिन और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, बिकॉज जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है और बदले में भाई ना गिफ्ट देने के बजाय जब उसको चिढ़ाता है ना, ये जो दिन है ना वो अपने आप में ना बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। खैर पहले चलिए आपका वेलकम कर देती हूँ, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूँ आर्यवंशी आप सभी के साथ, और बातें करने वाली हूँ बहुत सारी। वीकेंड लेकर आ गई हूँ, वीकेंड की एक्स्ट्रा वाइब लेकर आ गई हूँ, और राखी का सेलिब्रेशन लेकर आ गई हूँ, तो बहुत सारी बातें है, बहुत सारी मस्ती है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, तो जाइएगा कहीं नहीं। और आज तो मैं ये भी नहीं बोलने वाली कि गर्मा गर्म चाय की चुस्के ले लो, भाई आज मैं बोलने वाली हूँ कि घेवर जाकर खाओ यार, रसगुल्ले खाओ, रसमलाई खाओ, मीठा खाओ जितना हो सके, क्योंकि जब मीठा खाते

ही है, पर साइंस कुछ और कहे। हर मेडिसिन की टेस्टिंग होती है, एक वक्त तक उसकी क्वालिटी की गारंटी होती है, उसके बाद असर कम हो सकता है और रिस्क बढ़ सकता है।

हाँ जी, वीकेंड में भी आ गए हैं, आलस भी आ गया है और आ गया है रक्षाबंधन। तो देखिए भाई, वाइब बहुत ही एक्स्ट्रा वाली है और इस एक्स्ट्रा वाइब के साथ जान लेते हैं आज मौसम क्या कहता है। तो भाई फरीदाबाद वालों, फ्राइडे की मॉर्निंग है, क्लाउडी सा है आज का दिन। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, 29 से 35 डिग्री के बीच रहने वाला है और बारिश के चांस फिलहाल 10% है। तो अम्ब्रेला से ज्यादा जरूरी है भाई पानी की बॉटल, अपने साथ पानी की बॉटल जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती आज कहीं फेंट होके गिर जाओ यार। रक्षाबंधन है आज, आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट करना और वीकेंड का मूड भी सेट हो गया है। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम को करते हैं एंजॉय, आज के दिन को करते हैं एंजॉय और साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: calling.
1: Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

हाँ जी, तो बातें बहुत सारी करेंगे लेकिन आज बात कर लेते हैं तारीख पे तारीख की। तो भाई देखिए, आज की तारीख कैलेंडर लेकर आ गए 28th of August, यानी कि आज है रक्षाबंधन। और ये दिन की बात करूँ ना तो ये दिन बहुत ज्यादा प्रीशियस है। भाई बहन का जो रिश्ता है ना वो ये दिन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। फिर बात करें उस धागे की जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है और बदले में मिलते हैं बहुत सारे गिफ्ट। और यार सच्ची बताएं ना तो हम बहनों को ना इन गिफ्ट्स का कोई लालच नहीं होता, ये तो हम अपने भाई को परेशान करने के लिए करती है। लेकिन ये जो प्यार है ना भाई बहन का, ये जो बॉन्ड है ना, उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा बना देता है आज का दिन। और बस यही कहने वालों की जितने भी भाई आज मुझे सुन रहे हैं ना, अपनी बहनों को अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिएगा, भले ही फिर आपकी भाई पॉकेट मनी जो है वो खत्म हो जाए इस महीने की। तो क्या हुआ, साल में एक ही दिन तो आता है ना, साल में एक दिन तो हम अपने बहन को पैम्पर कर ही सकते हैं ना। पूरा साल तो बड़ी बहनें आपको पैम्पर करती है ना, तो आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि क्या क्या मिला आपको गिफ्ट में, आप पता है ना बताने के लिए कहाँ जाना है। आ जाइएगा हमारे पास रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर ये जरूर बताइएगा आपको आपके भाई ने ऐसा क्या स्पेशल दिया है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहाँ मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फंड ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

0: ओए मेरा चार्जर कहाँ है?
1: जो मेरा चार्जर था कल।
0: अरे अभी इमरजेंसी है, 1% बैटरी है।
1: अच्छा जब मेरी 1% थी तब तो तू बोला था कि भगवान का नाम ले।
0: यार चार्जर दे दो।
1: एक काम कर।
0: क्या?
1: कल जो मेरी चॉकलेट खाई थी ना उसकी शोक सभा मना ले।
0: मतलब चार्जर नहीं मिलेगा?
1: मिलेगा, रेंट पर।
2: तारा ना दिसक या चन्न खो जावे तनो संग रखना।
3: भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। चीजें घर की होती है लेकिन ओनरशिप पर्सनल होती है। इसी प्यारी तकरार और बेशुमार प्यार के साथ 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी

बॉलीवुड मूवी की बात आती है ना, तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है एक्टर, एक्ट्रेस, अच्छे गाने, अच्छी डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें हमें नजर आती है। लेकिन कभी आपने सोचा एक मूवी को बनने में कितना टाइम लगता होगा? और जहां पर एक ऐसी मूवी की बात करूं मैं, जिस मूवी में हीरो भी रेडी था, डायरेक्टर भी रेडी था, प्लॉट भी रेडी था, बजट भी रेडी था, लेकिन स्टिल उस मूवी को ना पर्दे पर आने के लिए 23 साल लग गए। जी बिल्कुल, आज मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज बताने वाली हूँ जिन्होंने पेशेंस की भी परीक्षा ले ली। तो चलिए पहले शुरू करते हैं के आसिफ की लव एंड गॉड। इस मूवी को पूरा होने में लगे थे 23 साल, उसके बाद ये पर्दे पर आई थी। और फिर वही पाकीजा की अगर मैं बात करूँ, इसे बनने में लगभग 16 साल लगे थे, और मुगल ए आजम को भी करीब 16 साल ही लगे थे। तो देखिए, इतना टाइम के बाद ये मूवीज ना स्क्रीन पर आई जब हमने इन्हें देखा। तो और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, अगर मैं बात करूँ मलयालम की, तो भाई मलयालम में सर्वाइवल ड्रामा द गॉड लाइफ की जर्नी की करीब 16 साल रही। और जबकि ब्रह्मास्त्र की बात करूँ तो मैं ब्रह्मास्त्र को बनने में 11 साल लगे। अब ये जरूर सोचेगा, आजकल हम ट्रेलर देख के ही पूछने लगते हैं रिलीज डेट कब है, और इन फिल्मों के मेकर्स से पूछें तो शायद जवाब आए भाई पहले फिल्म पूरी हो। फिर जब ये मूवी स्क्रीन पर आती है और जब मजा नहीं आता तो होता है मूड खराब। खैर देखिए, ये थी सिनेमा की गलियारी की कुछ बातें, और बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाली हूँ, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

जिंदगी में बहुत सारे बोनसेस के बारे में सुना, लेकिन कभी बेबी बोनस के बारे में सुना का? नहीं सुना ना, तो चलिए फिर सुनाते हैं आज आपको। फटाफट से चलते हैं फरीदाबाद से निकल के सिंगापुर। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ना अब लोगों के लिए बेबी बोनस लेकर आ गई। बिकॉज अगर मैं बात करूँ इस देश की, तो भाई यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ का जो बर्थ रेट है, वो बहुत ज्यादा लो हो गया है। और ये सुनने के बाद ना यहाँ की गवर्नमेंट आ गई स्ट्रेस में कि अगर जनता ही नहीं रहेगी तो देश कैसे रहेगा। अब अपने देश को बचाने के लिए ना वहाँ की फैमिलीज को अप्रोच किया है कि अगर आप बेबी प्लान करते हो तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको 52 लाख रुपए तक का सपोर्ट करेगी, जिसके अंदर बच्चे के बर्थ से लेकर 17 साल की एज तक डिफरेंट बेनिफिट्स एंड सपोर्ट के फॉर्म भी दिए जाएंगे। तो देखिए, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। जो फैमिलीज ये सोच रही थी ना कि बेबी प्लान गिरने के बाद बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा उनके ऊपर, फाइनेंशियली चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, तो भाई देखिए अब आपका खर्चा उठाने वाली है आपकी सरकार, तो भाई देरी किस बात की, अभी बेबी प्लान कर लीजिए। और यार अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा लो हो जाएगा ना देश में, वो बात नहीं रहेगी, देश के जो लोकल लोग है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो इन चीजों को रोकने के लिए ना सरकार ने इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा उठाया है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की, ये सारे एक्सपेंसेस भी कवर होने वाले हैं। तो भाई देखिए, इस कंट्री का ना सिंपल सा मैसेज है, बेबी आपका, सपोर्ट हमारा। तो भाई जितने भी लोग अभी बेबी प्लान करने से डर रहे थे ना, आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। और इसी के साथ ही बहुत सारी बातें लेकर आऊंगी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी देर में ना।

0: Doctor calling.
1: Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see bahut sare log social media follow karte hain, bahut sare trends follow karte hain, bahut sare influencers aur celebrities ko follow karte hain aur crash diets karte hain, jo ki unki body ke liye bilkul bhi sehatmand nahi hai. Jo dusre ki body pe suit kar raha hai, wo आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं, वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कंफर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद.
0: डॉक्टर कॉलिंग.

मेरे सैया जो सैया जो मैंने ब्रेकअप कर लिया। अगर भाई इस तरह का गाना कोई गाता हुआ नजर आए, इस तरह का गाना अगर कोई सुनता हुआ नजर आए ना, तो उसे जाकर बता देना कि अब तक ना जिंदगी में जो ये सिक लीव, कैजुअल लीव, मेटर्निटी लीव ली थी ना, लेकिन अब टाइम हो गया अपनी ब्रेकअप लीव लेने का। बिकॉज मैं लेकर आ गई हूँ आज का सोशल स्यापा। और आज का सोशल स्यापा ना उन सभी बेचारे लोगों के लिए है जिनका अभी अभी दिल टूट, और जब दिल टूटता है ना यार बहुत तकलीफ होती है। उसी तकलीफ को दूर करने के लिए बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक यूनिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। और ये पॉलिसी ना रिलेशनशिप या फिर ब्रेकअप के बाद एम्प्लॉय को अप टू 7 डेज की पेड लीव दे रही है। तो और क्या ही चाहिए यार, अगर इस तरह की कंपनी मिल जाए ना, हर एम्प्लॉय की जिंदगी जो है सवर जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ पता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसके लिए ना तो कोई आपको प्रूफ देने की जरूरत है, और ना ही आपको ये बताना है कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, कितने साल पुराना रिलेशनशिप था, एक्चुअल में था भी या नहीं भी था। तो ये कंपनी आप पर इतना ट्रस्ट करती है, और कंपनी का मानना ये है कि ब्रेकअप के बाद ना इमोशनल रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम मिलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो एम्प्लॉय है ना जब वो वापस आए ना तो बेटर आउटपुट दे सके और अपनी मेंटल हेल्थ भी ठीक कर सके। वैसे अगर देखा जाए ना, कंपनीज ना बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन कभी कंपनी ने ये सोचा कि सारे एम्प्लॉय जो है आजकल जेंजी है, और जेंजी लोगों के साथ क्या होता है, उनका दिल टूटता है अक्सर। और जब दिल टूटता है तो उन्हें क्या चाहिए होता है भाई, उन्हें चाहिए होती है लीव, ताकि वो सोकर रोकर और खाकर या कहीं बाहर घूमकर ना अपने दर्द को कम कर सके। तो ये जो दर्द है ना वो समझा इस बैंगलोर की कंपनी ने। थैंक यू सो मच, मेरे दिल से थैंक यू निकल रहा है, बिकॉज जब मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ ना यार जिनका दिल टूट जाता है, एक्चुअल में बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वो पेन मैं एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो पेन क्या था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक दोस्त की ना ब्रेकअप स्टोरी सुनी, और वो सुनने के बाद ना मुझे ऐसे लगा उस बेचारे की जिंदगी उजड़ गई, उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे में ना बैंगलोर की इस कंपनी को ना मेरा तो मन कर रहा है मैं जाके सल्यूट करूं, और 7 दिन की पेड लीव।

कम नहीं होती है, इतने में ना इंसान थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। तो भाई इस कंपनी ने तो इनिशिएटिव ले लिया है। अब जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं ना, अपने बॉस को जाकर जरूर अप्रोच कीजिएगा कि बॉस प्लीज यार ये कुछ लीव्स हटा दो, पर ब्रेकअप लीव्स ऐड कर दो, सो दैट कि हमारे साथ अगर कुछ होता है ना तो हम भी रिकवर कर सके। इसी के साथ बस ये कहना चाहूंगी, टेक केयर, हील वेल, और जब भी दिल ठीक होना तभी जिंदगी में आगे बढ़िएगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

हेलो हेलो जी, तो आ गई मैं फिर से लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। और आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट उन सभी क्रिएटर्स के लिए है जो YouTube से अर्निंग के ड्रीम्स देख रहे हैं। तो भाई देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये अपडेट ना आपका दिल तोड़ने वाली है आज, तो अपने दिल को रखिएगा थाम कर, बिकॉज YouTube ने अनाउंस कर दिया है फ्रॉम 1 February 2027 से। सो भाई, जितने भी नए क्रिएटर्स है ना, उनके लिए एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन के लिए एंट्री क्राइटेरिया टफ होने वाला है। तो चलिए फिर अभी का क्राइटेरिया भी जानते हैं। और अभी का एड रेवेन्यू क्राइटेरिया कहता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर के साथ 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स या फिर 90 दिन में 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। तो भाई जो ये न्यू रूल्स आए हैं, ये अपने टारगेट को ना डबल करके आए, यानी कि अब आपको चाहिए 8000 वॉच आवर्स, 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज बस। मुश्किल है, आई नो, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आज नहीं तो कभी तो सही। तो देखिए, शुरुआत तो आपको करनी है, और इसी के साथ ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ चेंजेस न्यू क्रिएटर्स के लिए हुए हैं जिनका अकाउंट बनेगा न्यू, और जितने भी पुराने क्रिएटर्स है ना, उनके लिए पुराने रूल्स ही चलेंगे। तो भाई यहाँ पर हुआ है भेदभाव और ये पार्शियलिटी है। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ एक शॉर्ट्स के भरोसे मत बैठिएगा, कंसिस्टेंट कॉन्टेंट और लॉयल ऑडियंस जरूर बनाएगा, और फिर देखिएगा एक दिन आपके वॉच आवर्स, आपके जितना भी क्राइटेरिया है कम्प्लीट हो जाएगा, और आप भी अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर, मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं अपने मूड को थोड़ा सा लाइट, और मूड को लाइट करने के लिए ना बजा देती हूँ एक शानदार सा गाना। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आती हूँ ना थोड़ी देर में।

0: का लास्ट पीस कहाँ गया?
1: मुझे क्या पता।
0: अच्छा, और मुंह पे क्रीम किसकी लगी है?
1: इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
0: CBI बुलाऊं?
1: देखो, बिना सबूत के इल्जाम ना लगाओ।
0: सबूत तेरा मुंह है।
2: सुबह खूब झगड़ते, साथ फिर खाना खाए।
3: घर में कुछ भी गायब हो जाए, पहला शक हमेशा भाई पर ही होता है। इसी हंसी मजाक और यादों से भरे रिश्ते के नाम 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।
2: भाई

क्या अभी उन्हीं लोगों में से जिन्हें ये जानने की बहुत ज्यादा बेताबी थी कि आखिर 25 अगस्त को होगा क्या। अगर आप उन लोगों में से ना भाई, तो मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को। मैं यहाँ पर आती हूँ, आपको इतनी सारी चीजें बताती हूँ कि स्कैम से बचकर रहना, लेकिन नहीं, जहाँ पर भी वर्चुअल वर्ल्ड आपको जो दिखाते हैं ना, आप उसके पीछे हो लेते हो। तो भाई देखिए, 25 अगस्त को क्या होने वाला था। इस सस्पेंस ने लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड की, जिसकी वजह से ना 500 रुपए देकर ना लोगों का बहुत बड़ा स्कैम हो गया। एक्चुअली मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। इंस्टाग्राम पर 25 अगस्त 2026 के नाम से ना एक अकाउंट बनाया गया था, जिस अकाउंट के अंदर एक काउंटडाउन क्रिएट किया गया था, एक हाइप क्रिएट की गई थी कि 25 अगस्त को ना कुछ बहुत बड़ा रिवील होने वाला है। फिर हुआ क्या, 25 अगस्त को इस बंदे ने, जिसका अकाउंट था, एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर टेलीग्राम का लिंक था, और लिंक के अंदर था कि अगर आपको ये मिस्टीरियस वीडियो देखनी है, आपको 500 रुपए डिपॉजिट करने होंगे। यहाँ पर लोगों के अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी

थी ना कि उन्होंने 500 रुपए डिपॉजिट भी किए, और जैसे ही डिपॉजिट किया ना क्या रिवील हुआ, और रिवील हुई एक मोटिवेशन वीडियो। और आपको पता है अगर मैं इस क्लेम की बात करूँ ना तो अलग अलग क्लेम किया जा रहा है, जैसे कि 8.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। तो देखिए भाई ये ना अब तक का बहुत बड़ा स्कैम रहा है, और अगर आप भी इस स्कैम का शिकार बने हो ना तो यार प्लीज प्लीज बी अवेयर। आप खुद सोचिए अगर कोई इंसान एक हाइप क्रिएट कर रहा है तो क्या जरूरत है उस हाइप का पार्ट बनने के लिए। इस तरह की गलती मत कीजिए, बिकॉज ये मेहनत की कमाई अब इस इंसान के बस घर बैठे आ गई है। वैसे लोगों के अकॉर्डिंग ना ये आइडिया बहुत अच्छा, और लोग ना इस आइडिया को फिर से रियूज करने वाले हैं। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम अपना पोपट मत करवाइएगा, इस तरह के स्कैम से बचिए, इस तरह के फोमो से बचिए, और हाँ बी अवेयर, बी स्मार्ट, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: स्टोरी ना ये बता रही है कि रास्ते पर एक बेगर जो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे राखी बांधो, प्लीज मुझे राखी बांधो, और लोग ना उससे बहुत दूर भाग रहे थे। बिकॉज आप सभी को पता है ना, जब आप बेगर्स को देखते ना, हम खुद भी दूर भाग जाते हैं कि यार फिर से वही परेशान करेगा, हो सकता है इसका इंटेंशन कुछ खराब हो हमें लेकर। लेकिन वहां पर ना एक छोटी सी लड़की आई, उसने उस बेगर के हाथ से राखी ली और उसे बोला कि भैया अगर आपको राखी बांधवानी है तो मैं आपको राखी बांध देती हूँ। और फिर पता है स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट क्या था? इस स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट ये था कि उस बेगर के पास भी इस लड़की को देने के लिए कुछ नहीं था और उसने ना अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। और जब ये स्टोरी देखी ना, एक्चुअल में ये स्टोरी फील गुड स्टोरी थी। और बस यही कहना चाहती हूँ, फेस्टिवल ना किसी एक इंसान का नहीं होता, ये सबका होता है। और अगर आपको भी रास्ते में कोई ऐसा इंसान मिलता है जो एक्चुअल में आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो प्लीज उसे रिस्पेक्ट जरूर दीजिएगा। और रक्षाबंधन ना यार बहुत प्यारा फेस्टिवल है, आज इस फेस्टिवल को और भी अच्छे से मनाइएगा। अगर आपको भी कोई ऐसा इंसान मिलता है ना, तो आगे बढ़िएगा, प्यार बांटिएगा, मिठाइयां बांटिएगा, और हाँ रिस्पेक्ट भी बांटिएगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है कुछ ही देर में।
1: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

हाँ जी, फरीदाबाद वाले वो बहुत पैसे कलेक्ट करने वाले हैं ना, आज तो रक्षाबंधन है। लेकिन उससे पहले ना चलिए दिमाग की बत्ती जला ही लेते हैं, यानी कि मैं लेकर आ गई हूँ फिर से अपना फरीदाबाद की पहली सेगमेंट। तो चलिए फिर आज की पहली पूछ ही लेती हूँ। आज देखते हैं हिस्ट्री में कितनी पकड़ है आप सभी की। और ये जगह शायद आपने देखी हो, लेकिन इसका राज पता होना बहुत जरूरी है। चलिए पहले बात करते हैं पहली की। ना ये मॉडर्न डैम है, ना कोई नया टूरिस्ट स्पॉट, हजार साल से भी पुराना। अरावली की पहाड़ियों के बीच मेरा ठिकाना, पत्थरों से बना हूँ और कभी पानी रोकने का काम करता था, बताओ मैं कौन हूँ। तो भाई फटाफट से जाइए और बताइए मुझे कि आखिर मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। अगर मैं इस जगह की बात करूँ ना, तो एक और हिंट दे दी, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो फटाफट से जाइए और बताने के लिए बताना आपको कहाँ जाना है। आपको आना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना आंसर भेजना है। देखते हैं कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

हाँ जी, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर ना पॉकेट पर तो असर पड़ता है, लेकिन ना आज घर की किचन पर भी असर पड़ने वाला है। आज आपका बजट हिलने वाला है, बिकॉज जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो ना हम इंडियंस की प्रॉब्लम है, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं ना, आप चाहे ना कुछ भी खिला लो यार, लेकिन जब तक चाय नहीं पिला देना, इनको ऐसे लगता है इनकी खातिरदारी नहीं। खास कर अगर मैं बात करूँ फूफा जी की, इनका तो मुँह ऐसा हमेशा फूला होता है ना। तो देखिए, आज फूफा जी को बोल दीजिएगा कि ज्यादा चाय ना पिए, क्योंकि हो गई है चीनी महंगी। चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है यार। पटना के होलसेल मार्केट में पिछले एक महीने में शुगर के रेट्स काफी बढ़े हैं और रिटेल में चीनी 65 से 70 रुपए पर केजी तक पहुंच गई है। कसर सिर्फ चीनी पर नहीं भाई, हमारी मिठाइयों पर भी देखने को पड़ेगा। और साथ ही चाय के जो रेट्स है ना, वो भी ज्यादा हाई हो गए हैं। यानी कि जो चाय आपको पहले 10 रुपए की मिलती थी ना, वो चाय अब आपको 15 और 20 रुपए की मिलेगी। तो जितने भी चाय पगलू है ना बेचारे, उनकी जिंदगी में ना ऐसा अकाल आने वाला है ये चीनी की वजह से। और ये ना शायद उन्हीं लोगों का श्राप है जो ये कहते थे ना कि हम तो शुगर ही नहीं खाते, हमें शुगर पसंद नहीं है, शुगर खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो भाई देखो, भगवान ने यहाँ पे तथास्तु बोल दिया। भगवान ने बोल दिया कि अब मैं जो चीनी थी ना, जिसकी वैल्यू इतनी कम कर दी थी आप लोगों ने, अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ताकि हर कोई इसे अफोर्ड भी ना कर पाए। तो भाई देखो, जो लोग चाय पगलू थे ना, अब अपनी चाय कम कर दो यार, क्योंकि पूरी सैलरी चली जाएगी चीनी जी पर। और इसी के साथ ही जितनी भी मिठाइयाँ आज आ रही है ना, उन मिठाइयों को ना थोड़ा स्टोर करके रख लेना, ताकि जब जब मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, तो फ्रिज से निकाल कर खा लो। और फूफा जी को बोल देना ज्यादा चाय ना पिए आज। और साथ ही सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मम्मी को बता दूं?
1: नहीं।
0: पक्का?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: ठीक है,
1: थैंक गॉड।
0: वैसे मुझे नए ईयरफोन्स चाहिए।
1: ये ब्लैकमेल है?
0: नहीं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज।
2: घर आंगन में शोर मचा कर बातें मनवा ले।
3: हर बहन के पास एक सीक्रेट बैंक होता है और हर भाई उसका लाइफ टाइम कस्टमर। हर सीक्रेट और हर लाइफ को समर्पित 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।

0: नागिन, कितने शॉट्स पिए नागिन, फिर कभी।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हाँ जी, फैजाबाद वाले, रक्षाबंधन है आज और आज के दिन में कुछ खास ना लेकर आओ, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो अपनी जितनी भी फैजाबाद और हरियाणा की बहनें हैं ना, उनके लिए मैं स्पेशल चीज लेकर आ गई हूँ। 28 अगस्त यानी कि आज के दिन 12 बजे तक ना, हरियाणा रोडवेज की ऑर्डिनरी बसेस में वुमेन और उनके 15 साल तक के बच्चों के लिए ना फ्री ट्रेवल अनाउंस हो चुका है। और ये किया है आपकी अपनी सरकार ने, आपकी अपनी गवर्नमेंट ने, यानी कि जितनी भी डेली टू चंडीगढ़ वाली हरियाणा रोडवेज ऑर्डिनरी बसेस है ना, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। आप इनका भी फायदा उठा सकते हैं। और बस एक बात आपको याद रखनी है, एसी या फिर अदर कैटेगरी की जितनी भी बस है ना, वो फ्री ट्रेवल फैसिलिटी अप्लाई नहीं करती है। तो प्लीज जाकर वहाँ के कंडक्टर से मत लड़िएगा, मत भिड़िएगा, जो बसेस आपको अलॉट की गई है ना, उसका ही फायदा उठाइएगा। क्योंकि कई बार जब हमें फ्री की चीजें मिलती है ना, हम पागल हो जाते हैं। अभी कानपुर का किस्सा तो आपने देखा ही होगा, फ्री की चॉकलेट्स के लिए लोग पागल हो गए यार। तो ऐसा मत कीजिएगा, त्योहार का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, इस फेस्टिवल टाइम को ना अच्छे से शांति के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। और हाँ, जितना फ्री दिया गया ना, सिर्फ उतने का ही फायदा उठाइएगा। तो भाई जितनी भी बहनें आज मुझे सुन रही है ना, यहाँ से फ्री में ट्रेवल करके जाइए और घर जाकर ना भाई को बोल दीजिए कि भाई निकाल के आया यार, इतने दूर से आई हूँ मैं तुझे राखी बांधने के लिए। तो आज का दिन आपके लिए है, जितने भी भाई बहन आज मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयां। आज का दिन प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और बहुत सारी केयर के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। अपने साथ साथ दूसरों को भी प्यार, रिस्पेक्ट सब दीजिएगा। और आज का दिन जितना प्यार से हो सके ना, उतने प्यार से सेलिब्रेट कीजिएगा। बिकॉज फिर उसके बाद ना, बैक टू पवेलियन तो होना ही है, वही सारी घिसी पिटी जिंदगी। सो ये जितने भी फेस्टिवल हैं, वो हमें रीस्टार्ट, रीसेट और रिलैक्स करने के लिए आते हैं। सो एंजॉय कीजिए आज का दिन और कलेक्ट कीजिए बहुत सारे पैसे। मिलते हैं कुछ ही देर में इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: One wine, please.

किसी को बुलाना कितना आसान है ना, मतलब अब तो खरीदा भी जा सकता है, पर क्या ऐसी दुनिया में तुम मुझे याद रखोगे हमेशा के लिए?

हमारे रास्ते अब अलग हैं। मैंने तुम्हें भुला दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे भूल जाओ, ताकि जब हम दोबारा मिले तो अजनबी हो।

0: पूछ अपने बारे में।
1: ओए मेरा चार्जर कहाँ है?
2: जो मेरा चार्जर था कल।
1: अरे अभी इमरजेंसी है, 1% बैटरी है।
2: अच्छा जब मेरी 1% थी तब तो तू बोला था कि भगवान का नाम ले।
1: यार चार्जर दे दो।
2: एक काम कर।
1: क्या?
2: कल जो मेरी चॉकलेट खाई थी ना उसकी शोक सभा मना ले।
1: मतलब चार्जर नहीं मिलेगा?
2: मिलेगा, रेंट पर।
3: तारा ना दिस या चन्न खो जावे तन्नो संग रखना।
4: भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। चीजें घर की होती है लेकिन ओनरशिप पर्सनल होती है। इसी प्यारी तकरार और बेशुमार प्यार के साथ 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षा।

सिंह के पास कुछ जगह है, जो कि सुमित पूरी तरह से गलत है। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि वक्त निकाल करना पहले आप अपने फरीदाबाद को जानिए, क्योंकि भाई बहुत जरूरत है सुमित आपको फरीदाबाद के बारे में जानने के लिए। खैर चलिए अब वक्त आ गया है पलक का आंसर जानने का, और पलक ने ना एकदम सटीक एकदम सही आंसर दिया। तो भाई देखिए पलक का आंसर था अनंतपुर डैम। और अगर मैं इस डैम की बात करूँ, फरीदाबाद के अनंतपुर में ये हिस्टोरिक डैम तोमर एरा इंजीनियरिंग से जुड़ा है और सूरज कुंड से करीब 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है ये डैम। तो अगर आप नहीं गए हैं तो जरूर जाएगा और यहाँ पर जाकर ना देखिएगा कि कितना खूबसूरत डैम है ये। और मैं फिर आऊंगी लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय

0: कि वो हंसी कानों में छोड़ दी है।
1: लिखा मेरी।

हेलो हेलो फरीदाबाद। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को ना अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन कई बार ना जब ये वायरल जैसी चीज़ें आ जाती है ना हमारे आसपास, तो हम ना जाकर भी ना बीमार हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ना आज का मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। आप सभी को पता है कि स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन दिनों, जहाँ पर फीवर और कफ ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग ये है कि इससे ना हमारा हार्ट भी इम्पैक्ट होता है। तो भाई दिल्ली में H1N1 केसेस बढ़ने के बीच ना तो भाई डॉक्टर ने एक एडवाइजरी जारी किया, और इस एडवाइजरी के जारी ना कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शन हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल सकता है और हो सकती है एक्स्ट्रा हार्ट इन्फ्लेमेशन। तो जितने भी हार्ट डिसीज या फिर हाई बीपी वाले लोग है ना, इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि आपको कफ है, कोल्ड है, आपको फीवर आ रहा है, तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलिएगा, उन्हें बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। और अगर आपको लगता है ना कि आपको हैवी ब्रीदिंग हो रही है और सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भी इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं है अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और अच्छा स्लीप। आपको जरूरत है अपनी बॉडी को प्रायोरिटी बनाने की, अपने हर एक सिम्टम्स को समझने की, डॉक्टर से मिलने की, और हाँ टाइम पर उस बीमारी का इलाज कराने की। तो इसी के साथ एंजॉय कीजिएगा आज का दिन, और एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: का लास्ट पीस कहाँ गया?
1: मुझे क्या पता।
0: अच्छा, और मुंह पे क्रीम किसकी लगी है?
1: इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
0: सीबीआई बुलाऊं?
1: देखो, बिना सबूत के इल्जाम ना लगाओ।
0: सबूत तेरा मुंह है। सुभान।

हाँ जी, बहुत सारी बातें करने के बाद ना फाइनली मेरा वक्त आ गया यहाँ से जाने का। और जाने के बाद ना यार मुझे घर जाकर पहले तो भाई को राखी बांधनी है, और राखी बांधने के बाद ना करानी है उसकी जेब ढीली, बिकॉज आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रेडियो महारानी की इंटायर टीम की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छे से आज का दिन सेलिब्रेट कीजिएगा, भाई की पॉकेट खाली कीजिएगा, जितना मीठा शीठा खाना ना खाएगा, बिकॉज उसके बाद ना फिर सभी वही फिटनेस फीक होने वाला है। लेकिन आज का दिन है आपके पास, तो आज का दिन एंजॉय कीजिएगा। और आज मैं कोई टिफिन नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं ये भी नहीं जानने वाली कि आज आपके टिफिन बॉक्स में क्या है, बिकॉज आज मैं खाने वाली हूँ बहुत सारी चीजें। और मैंने ना फरमाइश की थी मम्मी को कि जब मैं ऑफिस से घर आऊंगी ना तो यार मुझे छोले भटूरे जरूर खिलाना, मुझे ना क्रेविंग हो रही है छोले भटूरे खाने की। जो रक्षाबंधन पर मेरी मम्मी बनाती है ना यार, कोई जवाब नहीं उस छोले भटूरे का। तो आप भी आज एंजॉय कीजिए ये चीट मील और एंजॉय कीजिएगा ये दिन। खैर फिलहाल मैं चलती हूँ और कल नहीं मिलने वाली, वीकेंड में आ गए हैं। और हाँ, वीकेंड भी बधाइयां देनी तो बाकी है यार, और बाकी है ना यार, तो वीकेंड को भी एंजॉय कीजिएगा, रिलैक्स स्टार्ट होकर ना मंडे मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.16 FM पर। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्म फ्लेवर। और दोस्तों आज बात करते हैं सबसे पहले रक्षाबंधन की। तो सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन, राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। और इसी के साथ साथ आज वो त्योहार जहाँ भाई बहन का प्यार भरा बंधन दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, भाई बहन की वो प्यारी लोग झोंक जो पूरे साल चलती आती है, और यहाँ आकर के बहना फिर भाई की कलाई पर बांधती है राखी और त्योहार की शुरुआत होती है। ऐसे सिनेमा के गलियारों से बहुत सी चर्चाएं लेकर के आए, इसी के साथ साथ बताऊंगा कौन कौन सी नई कहानियां रिलीज होने जा रही हैं, कुछ तड़कते भड़कते किस्से, तो रक्षाबंधन से जुड़े किस्से कहानियां सिनेमा के पिटारे से आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार है तो कौन कौन सी कहानियां बिल्कुल आप देख सकते, भाई बहन के प्यार से जुड़ी वो कहानियां भी आपको बताऊंगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया गाने भी सिल्वर स्क्रीन से ओटी प्लेटफॉर्म तक। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले, यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले, सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके।

0: ओए मेरा चार्जर कहाँ है?
1: जो मेरा चार्जर था कल।
0: अरे अभी इमरजेंसी है, 1% बैटरी है।
1: अच्छा जब मेरी 1% थी तब तो तू बोला था कि भगवान का नाम ले।
0: यार चार्जर दे दो।
1: एक काम कर।
0: क्या?
1: कल जो मेरी चॉकलेट खाई थी ना उसकी शोक सभा मना ले।
0: मतलब चार्जर नहीं मिलेगा?
1: मिलेगा, रेंट पर।
2: तारा ना दिसक या जन खो जावे तनो संग रखना।
3: भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। चीजें घर की होती है लेकिन ओनरशिप पर्सनल होती है। इसी प्यारी तकरार और बेशुमार प्यार के साथ 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी

फ्लिप और आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी कहानियाँ जिनका आप लोग उठा सकते हैं और भाई बहन के प्यारे बंधन की झलक देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करता हूँ 2022 में रिलीज हुई कहानी रक्षाबंधन की, जहाँ अक्षय कुमार चार बहनों के बड़े भाई के रूप में नजर आते हैं। टाइटल के हिसाब से सबसे फिट कहानी और यहाँ भाई बहन के बंधन का एक बहुत ही प्यारा एहसास देखने को और महसूस करने को मिलता है। आगे बात करूँ हम साथ साथ जहाँ पे सूरज बढ़ जाते हैं कि क्लासिक कई भाई बहनों के बीच की प्रेम और प्यार की कहानी, जो बहुत ही बढ़िया फैमिली ड्रामा और भाई बहन के बंधन की कहानी है। फिर बात करते हैं सरबजीत, सच्ची घटना पर आधारित, जहाँ पर बहन यानी कि ऐश्वर्या राय भाई रणदीप हुड्डा को बचाने के लिए लड़ती है कि कुछ भी हो अपने भाई को तो बचाना ही। वही बात करते हैं दिल धड़कने दो, भाई बहन, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा रणवीर सिंह की कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग और फैमिली ड्रामा कहानी दिखाई गई है। तो इन कहानियों का आप आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर लुत्फ उठा सकते हैं। ये वो कहानियाँ जो इस त्यौहार को और ज़्यादा बढ़िया बनाते हुए नजर आएंगे, इन कहानियों को लुत्फ उठाइए। अब आगे अच्छी और भी चर्चा करता हूँ, उससे पाएगा ट्रैक।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत जरूरी है. ये सब चीजें जब बैलेंस रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

और मैं एक बार फिर से लौट आया हूँ फिल्मी टॉनिक आरजे मॉर्निंग लेकर के शो फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों यहाँ बात करते हैं टीवी सीरियल में ज्यादातर महिला किरदारों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, साथ ही टीवी सीरियल्स में विलन्स के रोल को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती नजर आई है कई किरदारों के जरिए। यहाँ अगर बात करूँ ऐसे खलनायक का किरदार निभाने वाले कुछ टीवी विलन्स के बारे में, सबसे पहले बात करता हूँ सुरेंद्र पाल सिंह के बारे में। सीरियल शक्तिमान में मुकेश खन्ना ने लीड रोल निभाया था जिसे काफी ज्यादा पसंद भी किया गया, और इस सीरियल में शक्तिमान का सामना तमराज किल्विश नाम के विलन से होता है, और किल्विश का फेमस डायलॉग था अंधेरा कायम रहे, वह दुनिया में बुराई और अंधेरा फैलाना चाहता था। इस किरदार को एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह जी ने निभाया और इस किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। फिर बात करते हैं करणवीर बोहरा के बारे में। दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भवा में विराज डोबरियाल का किरदार था और करणवीर बोहरा

इस गिटार को इतना ज्यादा प्यार मिला था ना कि भैया बात की जाए अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था ये गिटार, और एक साइको किस्म का कैरेक्टर। लेकिन इस साइको किस्म के कैरेक्टर के विलन वाले अंदाज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बेशक नेगेटिव रोल था, लेकिन नेगेटिव रोल को लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से सराहा आप जानते ही। अब भैया दिल था मेरी एक ऐसा किरदार जिसके हर डायलॉग में एक अलग ही अंदाज। कई बार केदार बेशक किसी को डांट रहा हो, लेकिन उनका डायलॉग इतना धमाकेदार कि कई बार तो हंसी भी छूट जाया करती थी। अब बात करता हूँ साल 2009 में सीरियल प्रतिज्ञा में एक बहुत ही बढ़िया किरदार निभाने वाले अनुपम श्याम जी के बारे में, जिन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया। अनुपम श्याम की लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें और बुलंद आवाज ने इस किरदार में एक अलग ही जान डाल दी थी, और इससे किरदार को बहुत ज्यादा फेम मिला। कई लोगों का तो ये भी कहना कि प्रतिज्ञा की कहानी कितनी अच्छी है नहीं जानते, लेकिन प्रतिज्ञा सीरियल हम लोग इसलिए देखा करते हैं कि ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार और उनका वह रुतबेदार जो डायलॉग जो बोलते हैं बड़ा पसंद आ। फिर बात करता हूँ सुदेश बेरी के बारे में। टीवी पर अलग अलग तरह के इन्होंने किरदार निभाए, लेकिन साल 2009 में सीरियल अगले जन्म वो बिटिया ही कीजो में लोहा सिंह के किरदार में उन्हें अलग ही पहचान दी। लोहा सिंह अपने परिवार की मान मर्यादा को बचाने के लिए किसी को भी परेशान करने से पीछे नहीं रहता था, और बस इसी किरदार को और इसी अंदाज को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। बाकी ऐसी ढेरों बातें चर्चा लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशन और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

इसी खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर में फिल्मी टॉनिक। यहाँ आप दोस्तों बात करते हैं फिल्मों में देखिए कई किरदार ऐसे होते हैं जो दर्शकों को ताउम्र याद रहते हैं। कई बार तो कलाकार का नाम दर्शक भूल जाते हैं लेकिन किरदार का नाम कभी नहीं भूलते। और वेब सीरीज की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही एक्टर्स हैं जिनके निभाए किरदार ही दर्शकों को याद रहते हैं। बेशक असल नाम भूल गए हो लेकिन उनके किरदारों का नाम आज भी ज़बान पर रहता है। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करना चाहूंगा पंचायत वेब सीरीज के प्रहलाद चाचा के बारे में। देखिए पंचायत के कई सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में फैजल मलिक ने प्रहलाद चाचा का रोल निभाया। ये किरदार दर्शकों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इनके डायलॉग्स पर मीम्स भी बनना शुरू हो गए। प्रहलाद चाचा रिश्तों की, परिवार की और दोस्ती अहमियत दर्शकों को बताते नजर आते। इस सीरीज में विनोद यानी अशोक पाठक और बंदराकस दुर्गेश कुमार के किरदार को भी वैसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। आगे बात करते हैं गुल्लक की बिट्टू की मम्मी के बारे में। जी हाँ, वेब सीरीज गुल्लक में सुनीता राजभर ने बिट्टू की मम्मी का किरदार निभाया था और बिट्टू की मम्मी इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आई। वह आए दिन इस परिवार के घर में चली आती और कुछ ना कुछ खुराफात करती और इनकी इसी खुराफाती कहानियों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बात करता हूँ ऐसी एक और बेहतरीन वेब सीरीज कोटा फैक्टर के बारे में। जितेंद्र कुमार कई वेब सीरीज में लीड रोल कर चुके हैं लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्यार मिला कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के रोल में, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी नाम से उन्हें आज जाना ही जाना। वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में जितेंद्र कुमार ने एक कोचिंग सेंटर के टीचर का रोल निभाया जो बच्चों को खूब सपोर्ट करते नजर आते हैं। अब बात करता हूँ भैया एक और बहुत बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में, जिस वेब सीरीज की दीवान लोगों के सर पर चढ़कर बोलती है। वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया की पत्नी बीना का रोल एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने निभाया और इस सीरीज में ये किरदार काफी दमदार था। इस किरदार रश्मिका दुग्गल के एक्टिंग करियर का बेस्ट और पॉपुलर करेक्टर रहा। तो दोस्तों ऐसी ही और भी किस्से कहानियां बॉलीवुड के पिटारे से कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप सबके लेकर के आता रहूंगा। लेकिन उससे पहले सुना देता हूँ एक और खूबसूरत सा गाना ओली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: अंजलि।
1: हाँ जी, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर ना पॉकेट पर तो असर पड़ता है, लेकिन ना आज घर की किचन पर भी असर पड़ने वाला है। आज आपका बजट हिलने वाला है, बिकॉज जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो ना हम इंडियंस की प्रॉब्लम है, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं ना, आप चाहे ना कुछ भी खिला लो यार, लेकिन जब तक चाय नहीं पिलाते ना, इनको ऐसे लगता है इनकी खातिरदारी नहीं। खास कर अगर मैं बात करूँ फूफा जी की, इनका तो मुँह ऐसा हमेशा फूला होता है ना। तो देखिए, आज फूफा जी को बोल दीजिएगा कि ज्यादा चाय ना पिए, क्योंकि हो गई है चीनी महंगी। चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है यार। पटना के होलसेल मार्केट में पिछले एक महीने में शुगर के रेट्स काफी बढ़े हैं और रिटेल में चीनी 65 से 70 रुपए पर केजी तक पहुंच गई है। कसर सिर्फ चीनी पर नहीं भाई, हमारी मिठाइयों पर भी देखने को पड़ेगा। और साथ ही चाय के जो रेट्स है ना, वो भी ज्यादा हाई हो गए हैं। यानी कि जो चाय आपको पहले 10 रुपए की मिलते थे ना, वो चाय अब आपको 15 और 20 रुपए की मिलेगी। तो जितने भी चाय पगलो है ना बेचारे, उनकी जिंदगी में ना ऐसा अकाल आने वाला है ये चीनी की वजह से। और ये ना शायद उन्हीं लोगों का श्राप है जो ये कहते थे ना कि हम तो शुगर ही नहीं खाते, हमें शुगर पसंद नहीं है, शुगर खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो भाई देखो, भगवान ने यहाँ पे तथास्तु बोल दिया। भगवान ने बोल दिया कि अब मैं जो चीनी थी ना, जिसकी वैल्यू इतनी कम कर दी थी आप लोगों ने, अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ताकि हर कोई इसे अफोर्ड भी ना कर पाए। तो भाई देखो, जो लोग चाय बगलू थे ना, अब अपनी चाय कम कर दो यार, क्योंकि पूरी सैलरी चली जाएगी चीनी जी पर। और इसी के साथ ही जितनी भी मिठाइयाँ आज आ रही है ना, उन मिठाइयों को ना थोड़ा स्टोर करके रख लेना, ताकि जब जब मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, तो फ्रिज से निकाल कर खा लो। और फूफा जी को बोल देना ज्यादा चाय ना पिए आज। और साथ ही सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्म में ही प्ले। और याद दिला दूं और फिर से आपको शुभकामनाएं दे देता हूं रक्षाबंधन के त्यौहार की। तो यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार पे मैं कुछ कहानी आपको जरूर बताना चाहूंगा। रेकमेंड करूंगा कि इन गानों को जरूर सुनी जो रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत खूबसूरत बनाते नजर आते हैं। पहला गाना तो रक्षाबंधन मूवी का ही ऐसी वैसी नहीं, ये गाना टाइटल ट्रैक और बहुत ही खूबसूरत इसके लिरिक्स और आवाज। साथ ही बात करें दिल धड़कने दो मूवी का गाना गलती, जहाँ भाई बहन की नोक झोंक वाली फील देता नजर आता है ये गाना। और आगे बात करते हैं जोश पिक्चर के गाने, आपने याद दिलाया बहन के प्रति इमोशनल ट्रैक जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ साथ सरबजीत कहानी का गाना रब्बा, बहन के समर्पण और प्यार को दर्शाता हुआ ये गाना भी बहुत ही खूबसूरत है। ये वो गाने हैं जो कि भाई बहन के प्यार को नोक झोंक भरे एहसास को सबके सामने लाता है बहुत ही बढ़िया लिरिक्स के साथ, बहुत ही बढ़िया आवाज के साथ। और देखिए होता भी कुछ नहीं कि भाई बहन का जो बंधन है ना कुछ ही हुई है बचपन में कुछ छोटी छोटी नोक झोंक तकरार और रक्षाबंधन पर फिर वही प्यार वापसी। और देखिए भाई बहन का कुछ बंधन है भी, कभी नोक झोंक, कभी प्यार, कभी एक दूसरे से लड़ना, तो कभी एक दूसरे के लिए लड़ना कि बहन भाई के लिए भी कुछ कर जाती है और भाई बहन के लिए कुछ भी कर जाता है कि यार बहन ने कहा है कि ये तोहफा चाहिए तो चाहिए, और बहन भी कह जाती है यार भाई कभी कभी तो कुछ कहता है, बात मान लेनी चाहिए। यही तो है भाई बहन का प्यारा सा बंधन। ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले काट रहा है।

0: चार्जर दे दो।
1: एक काम कर,
0: क्या
1: कल जो मेरी चॉकलेट खाई थी ना उसकी शोक सभा मना ले।
0: मतलब चार्जर नहीं मिलेगा?
1: मिलेगा, रेंट पर।
2: तारा ना दिसे या चन्न खो जावे तनो संग रखना।
3: भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। चीजें घर की होती है लेकिन ओनरशिप पर्सनल होती है। इसी प्यारी तकरार और बेशुमार प्यार के साथ 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षा।

फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं बहुत ही ऐसी कहानियां जो कि आज के दौर में हाई बजट फिल्म मानी जाती है। कोई 500 करोड़ में बनी तो कोई 1000 करोड़ में। लेकिन दोस्तों देखिए, बात करूं 1960 के दौर की, एक ऐसे डायरेक्टर के आसिफ साहब, जिस दौर में लगभग कहानियों के बजट की बात की जाए, एक नॉर्मल बजट की बात की जाए तो 20 से 30 लाख, और अपर हायर बजट फिल्म रहती थी तो 50 से 60 लाख। लेकिन 1960 के दौर में के आसिफ साहब ने एक कहानी बनाई, जिस कहानी की हम बात करें मुगले आजम, जिस कहानी को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे के आसिफ साहब ने, और उस दौर के सबसे ज्यादा महंगी फिल्मों में से एक फिल्म रही थी 1.5 करोड़ रुपए।

की कहानियां 20-30 लाख के बजट में बनती थी और 1 करोड़ का आंकड़ा अपनी कमाई का भी पूरा नहीं कर पाती थी, लेकिन इस कहानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बनी और 11 करोड़ रुपए की कमाई अपने नाम करी, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड रहा था। मुगले आजम कहानी आप सब जानते हैं, जिस हिसाब से उस फिल्म का सेट बनाया गया था उस कहानी को कोई भी नहीं भूल सकता। मुगले आजम की अगर बात की जाए तो देखिए, आज की कलेक्शन के हिसाब से लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाए थे मुगले आजम ने उस दौर में, जब प्रमोशन के लिए ना तो कोई यूट्यूब चैनल था और ना ही सोशल मीडिया। तो के आसिफ साहब की हिम्मत की दाद आज भी लोग दिया करते हैं कि भैया उस दौर में इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की हिम्मत उन्होंने जुटाई। और जब फिल्म को रिलीज किया गया तो देव कुमार और मधुबाला के किरदारों को लोगों ने बहुत पसंद किया, मुगले आजम की कहानी को पसंद किया और स्पेशली उसके सेट को जिस हिसाब से बनाया गया था औसम। जैसे बात की जाए आज के दौर में आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, 1960 के दौर में के आसिफ साहब को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाना जाता था। कई सीन्स तो ऐसे थे जब एक एक सीन को परफेक्ट तरीके से शूट करवाने के साथ साथ 8-8 दिन गुजार दिया करते थे के आसिफ साहब, जब तक उन्होंने जिस हिसाब से सोचा है वैसा सीन नहीं शूट हो जाया करता था। तो के आसिफ साहब की बनी एक बहुत बेहतरीन फिल्म मुगले आजम को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और आज भी लोग इस कहानी को जब देखा करते हैं तो सल्यूट किया करते हैं। बॉस इतनी ज्यादा बेहतरीन कहानी आज के दौर में इतनी आसानी से बनाना पॉसिबल नहीं। बाकी ऐसी और ढेरों बातें चर्चा आप सभी लेकर

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

0: बता लास्ट पीस कहाँ गया?
1: मुझे क्या पता।
0: अच्छा और मुंह पे क्रीम किसकी लगी है?
1: इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
0: CBI बुलाऊं?
1: देखो बिना सबूत के इल्जाम ना लगाओ।
0: सबूत तेरा मुंह है।
2: सुबह खूब झगड़ते साथ फिर खाना खाए।
3: घर में कुछ भी गायब हो जाए पहला शक हमेशा भाई पर ही होता है। इसी हंसी मजाक और यादों से भरे रिश्ते के नाम 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।

फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर बनाने वाले कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में। सबसे पहले बात करता हूँ आयुष्मान खुराना। 2004 में रोडीज के विनर रहे और उसके बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया। विक्की डोनर ने कहानी दी और इस कहानी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। फिर नोटेबल कहानियों की बात की जाए, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और ड्रीम गर्ल जैसी कहानियों में किरदार निभाकर के अच्छा खासा प्यार बटोरा। फिर बात करता हूँ मृणाल ठाकुर के बारे में। 2014 से 2016 के बीच में टीवी पर कुमकुम भाग्य में किरदार निभाया और उसके बाद जब बॉलीवुड में डेब्यू किया 2018 की बात ही लव सोनिया से। सुपर 30 जर्सी और सीतारवम जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। फिर बात करता हूँ प्राची देसाई। टीवी शो जिसको 2006 से 2008 में रिलीज किया गया कसम से जैसे सीरियल्स के साथ प्यार बटोरा और उसके बाद जब बॉलीवुड में मौका मिला रॉक ऑन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। पहले बात करते हैं एक और जाना माना चेहरा यामी गौतम। चांद के पार चलो ये प्यार ना होगा कम जैसे कहानियों के साथ टीवी शोज में बहुत अच्छा खासा किरदार निभाया। फिर जब बॉलीवुड में उनका डेब्यू हुआ विकेट ओवर कहानी से और उसके बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, OMG 2 जैसी कहानियों में प्यार बटोरती नजर आई। ऐसी कुछ और चेहरों की मैं बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत बेशक आज हमारे बीच नहीं लेकिन उनके किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। पवित्र रिश्ता से उन्होंने शुरुआत करी थी, फिर बॉलीवुड में डेब्यू किया काय पहुंचे और उसके बाद MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी कहानियों में उनके किरदार को उनके एक्टिंग को बहुत ज्यादा सराहा गया। करण सिंह ग्रोवर दिल में गए 2007 से 2010 के बीच ये शो टीवी पर प्रीमियर हुआ और बॉलीवुड में जब डेब्यू का मौका मिला तो 2015 की बात थी। एलोन से डेब्यू किया और उसके बाद हीट स्टोरी 3 के किरदार को इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत फेम मिला इस किरदार का। वैसे कुछ ऐसे और पुराने चेहरों की अगर मैं और जाऊं तो एक और बहुत बढ़िया स्टार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ विद्या बालन जिन्होंने भी टीवी से ही शुरुआत करी थी और उसके बाद बॉलीवुड में अच्छा खासा प्यार कमाया। SRK की बात करते हैं हम, इन्होंने भी टीवी के एक बहुत बढ़िया सीरियल फौजी और सर्कस से शुरुआत करी और फिर बॉलीवुड डेब्यू किया देवाना से। तो देखिए बहुत ऐसे स्टार जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत करी और आगे बढ़े और आज बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमाते नजर आए। बाकी ऐसी अपने बातें चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत आप सभी।

टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

पतंजलि। हाँ जी, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर ना पॉकेट पर तो असर पड़ता है, लेकिन ना आज घर की किचन पर भी असर पड़ने वाला है। आज आपका बजट हिलने वाला है, बिकॉज जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो ना हम इंडियंस की प्रॉब्लम है, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं ना, आप चाहे ना कुछ भी खिला लो यार, लेकिन जब तक चाय नहीं पिला देना, इनको ऐसे लगता है इनकी खातिरदारी नहीं। खासकर अगर मैं बात करूँ फूफा जी की, इनका तो मुँह ऐसा हमेशा फूला होता है ना। तो देखिए, आज फूफा जी को बोल दीजिएगा कि ज्यादा चाय ना पिए, क्योंकि हो गई है चीनी महंगी। चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है यार। पटना के होलसेल मार्केट में पिछले एक महीने में शुगर के रेट्स काफी बढ़े हैं और रिटेल में चीनी 65 से 70 रुपए पर केजी तक पहुंच गई है। कसर सिर्फ चीनी पर नहीं भाई, हमारी मिठाइयों पर भी देखने को पड़ेगा। और साथ ही चाय के जो रेट्स है ना, वो भी ज्यादा हाई हो गए हैं। यानी कि जो चाय आपको पहले 10 रुपए की मिलती थी ना, वो चाय अब आपको 15 और 20 रुपए की मिलेगी। तो जितने भी चाय पगलू है ना बेचारे, उनकी जिंदगी में ना ऐसा अकाल आने वाला है ये चीनी की वजह से। और ये ना शायद उन्हीं लोगों का श्राप है जो ये कहते थे ना कि हम तो शुगर ही नहीं खाते, हमें शुगर पसंद नहीं है, शुगर खाने से ये हो जाता है वो हो जाता है। तो भाई देखो, भगवान ने यहाँ पे तथास्तु बोल दिया। भगवान ने बोल दिया कि अब मैं जो चीनी थी ना, जिसकी वैल्यू इतनी कम कर दी थी आप लोगों ने, अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ताकि हर कोई इसे अफोर्ड भी ना कर पाए। तो भाई देखो, जो लोग चाय पगलू थे ना, अब अपनी चाय कम कर दो यार, क्योंकि पूरी सैलरी चली जाएगी चीनी जी पर। और इसी के साथ ही जितनी भी मिठाइयाँ आज आ रही है ना, उन मिठाइयों को ना थोड़ा स्टोर करके रख लेना, ताकि जब जब मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, तो फ्रिज से निकाल कर खा लो। और फूफा जी को बोल देना ज्यादा चाय ना पिए आज। और साथ ही सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM।

हम बात करते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जो कि बिग स्क्रीन से यानी कि सिल्वर स्क्रीन से बिल्कुल ही गायब हो गए और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उनको एक जबरदस्त कमबैक दिया, एक नई पहचान बनाई। यहाँ कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में मैं बात करने वाला। सबसे पहले बात करूंगा बॉबी देओल। 90s में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी सोल्जर, गुप्त और बादल जैसी कहानियों के साथ, लेकिन काफी टाइम से सिल्वर स्क्रीन पर गायब रहे और कमबैक मिला आश्रम वेब सीरीज से, जिस आश्रम वेब सीरीज में इनको बहुत ज्यादा प्यार मिला और उसके बाद बॉलीवुड में फिर से दिखाई दिए एनिमल की कहानी के साथ। फिर बात करता हूँ मनोज बाजपेयी। अपने करियर की शुरुआत सत्य और शूल जैसी कहानियों के साथ और कुछ वक्त तक सिल्वर स्क्रीन पर नहीं नजर आए, लेकिन जैसी द फैमिली मैन जैसी कहानी इनके नाम इनके हाथ लगी तो इस द फैमिली मैन ने इनको एक अलग ही पहचान दिलाई और ओटीटी ने अच्छा खासा रोल निभाया इनके कमबैक के लिए। अब बात करते हैं रहना है तेरे दिल में। वैसे इस कहानी का नाम लेते सर आप स्टार का नाम तो जान ही लोगे, आर मान। बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में दोनों में हिट फिल्म्स इनकी रही, लेकिन जैसे ही ओटीटी पर लंबे अरसे बाद इनका नाम अनाउंस हुआ दी कपल से तो फैंस बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलिए लंबे अरसे बाद ही सही, लेकिन आर माधवन फिर से कमबैक करते नजर आए। ऐसी अब बात करते हैं सुष्मिता सेन के बारे में। 90 से 2000 में टॉप एक्ट्रेस में रही, जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियों के साथ बी नंबर वन मैं हूं ना और फिर बॉलीवुड से बिल्कुल ही दूरी बनाई, लेकिन जब कमबैक किया तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आर्या जैसी कहानी के साथ कमबैक करके इन्होंने फिर से फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। इस लिस्ट में से स्टार्स तो बहुत सारे शामिल हैं, मैं यही बात करूं तो विवेक ओब्रॉय, बहुत सारी कहानियां इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में किरदार निभाए और अच्छा खासा प्यार बटोर, लेकिन विवेक ओब्रॉय भी यार इंडस्ट्री से काफी दूर होते नजर आए, ना ही कोई किरदार निभाते नजर आए, ना ही कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की कोई इन्होंने जानकारी दी। लेकिन जैसे ही एकदम से फैंस को पता चला सोशल मीडिया कि भाई ओडी पर कमबैक कर रहे हैं वो भी इनसाइड एज से, तो फैंस का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और जैसे ही कहानी को रिलीज किया गया तो फैंस ने खूब इनके किरदार की वाहवाही की। और अब एक किरदार ऐसा अर्शद वारसी, बॉलीवुड करियर मुन्ना भाई एमबीबीएस धमाल के बाद थोड़ा सिल्वर स्क्रीन से दूर होते नजर आए, लेकिन भाई ओल्डी प्लेटफॉर्म ने जैसे हर किसी को मौका दिया अर्शद वारसी को भी एक मौका दिया असुर, और फैंस का ये कहना है भाई अर्शद वारसी का अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया किरदार रहा असुर। असुर में इनका जो किरदार था इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग, अपने करियर से बिल्कुल हट करके किरदार निभाया जहां इस कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। वैसे देखिए ये बात तो सोचा कि ओल्डी प्लेटफॉर्म ने ऐसे बहुत से स्टार्स को मौका दिया और फिर से उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनाया अपनी इन कहानियों के साथ। बाकी ऐसी चर्चा लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूब जरूर।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बहुत ही खूबसूरत गाना नगाड़ा संग ढोल बाजे। इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ गाने की बात हुई है तो क्यों ना बॉलीवुड के कुछ ऐसे गानों की बात करें जहाँ कुछ फिल्मों को इतना ज्यादा प्रमोशन या इतना ज्यादा प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन उनके गानों ने अच्छा खासा प्यार बटोरा। यहाँ अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एक बहुत ही बढ़िया कहानी चाइना गेट के बारे में, 1998 में इस कहानी को रिलीज किया गया और इस कहानी का गाना छम्मा छम्मा जो कि इस मूवी से ज्यादा प्यार बटोरता नजर आया। फिल्म बेशक उतनी ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन उर्मिला मातोंडकर का ये डांस सॉन्ग लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर बात करते हैं यस बॉस, 1997 में इस कहानी को रिलीज किया गया था। फिल्म SRK की थी जहाँ पे हमें जूही की नजर आई, और इस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, उस गाने का नाम है एक दिन आप। ये एक गाना चार्ट बस्टर बन गया था। इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, कहानी को तो प्यार मिला ही, लेकिन ये गाना शायद कहानी से भी ज्यादा फेमस हुआ। फिर बात करते हैं रेस, जिसको 2008 में रिलीज किया गया। पहली नजर में फिल्म हिट थी, लेकिन इस गाने का क्रेज आज भी उतना ही है जितना उस दौर में था। आतिफ असलम का मैजिकल वॉइस और रोमांटिक वाइब्स अच्छी खासी मैच हुई लोगों के फैन फॉलोइंग के साथ। फिर बात करता हूँ तुम ही हो फ्रॉम द मूवी आशिकी 2। फिल्म तो चल गई थी, लेकिन गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि उसने अरिजीत सिंह को सुपरस्टार बना दिया। हर टचिंग लिरिक्स और अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज दोनों का मैच अच्छा खासा प्यार बटोरते नजर आया। फिर बात करते हैं केसरिया फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। फिल्म ने मिक्स रिस्पॉन्स दिया, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा, लेकिन केसरिया हर जगह बज रहा था। सिंपल लिरिक्स और परफेक्ट मेलोडी के साथ इस गाने ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। अब बात करते हैं झूमे जो पठान फ्रॉम द मूवी पठान, जिसको 2023 में रिलीज किया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन ये गाना सबकी फिटनेस प्लेलिस्ट और शादियों का मस्ट प्ले सॉन्ग बन गया। SRK का स्वैग और विशाल शेखर का म्यूजिक, इन तीनों की तिकड़ी ने अच्छा खासा धमाल मचाया। बाकी ऐसी बॉलीवुड से और भी ढेरों बातें चर्चाएं लाता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत गाना आप सभी के लिए।

0: मम्मी को बता दूं?
1: नहीं।
0: पक्का?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: ठीक है,
1: थैंक गॉड।
0: वैसे मुझे नए ईयरफोन्स चाहिए।
1: ये ब्लैकमेल है?
0: नहीं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज।
2: घर आंगन में शोर मचा कर बातें मनवा ले।
3: हर बहन के पास एक सीक्रेट बैंक होता है और हर भाई उसका लाइफ टाइम कस्टमर। हर सीक्रेट और हर लाइफ को समर्पित 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।

फ्रॉम द मूवी ओके जानू और शो चल रहा है फिल्म फ्लेवर मैं मौत। दोस्तों हम बात करते हैं 90s के दौर की और आज के दौर की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जिन कहानियों के हीरोज की एंट्री ऐसी रही जो कि आइकॉनिक साबित हुई। तो ऐसे ही स्टार्स की बात हो 1995 में रिलीज हुई फिल्म करण अर्जुन जहाँ पे SRK की एंट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म के बहुत ही फेमस डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे। डायलॉग फेमस होने के बाद जब SRK जिंदा होकर एंट्री लेते हैं तो पूरा थिएटर सीटी मार बन जाता है। हर किसी ने इस सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिर बात करते हैं अजय देवगन की फूल और कांटे। दो बाइक्स पे खड़े होकर एंट्री करने वाले पहले ऐसे स्टार बॉलीवुड में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा धमाका होगा। ये स्टंट आज भी अजय की पहचान माना जाता है। अब बात करते हैं खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की। अक्षय की एंट्री एक थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है जो उनका खिलाड़ी कुमार टाइटल ही बन जाता है। उनके एक्शन पैक्ड करियर का सॉलिड फाउंडेशन रही खिलाड़ी जो कि 1992 में रिलीज की गई। अब बात करते हैं 2000 के दौर की जब ऋतिक रोशन की एंट्री कहो ना प्यार है में होती है। स्लो मोशन में बीच के ऊपर शर्टलेस डांस, उसके बाद एक धमाकेदार फाइट सीन, इतना ज्यादा धमाल मचाया था इस कहानी ने और ऋतिक के किरदार के साथ डांस ने भी। इष्ट विष्ट शाहिद कपूर की एक बहुत बेहतरीन कहानी रही। कॉलेज बॉय की चॉकलेटी एंट्री, डांस मूव्स और क्यूट स्माइल के साथ जेन जी और 90s के किड्स का नए एज क्रश बन जाना शाहिद कपूर के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर बात करते हैं जॉन अब्राहम की धूम। 2004 में इस कहानी को रिलीज किया गया और

एक राइडर हाई स्पीड बाइक चेज में एंट्री ले रहे हैं जॉन ब्राइन, और जब मास्क हटता है तो बूम जॉन ब्राइन की एंट्री सबने बहुत ज्यादा पसंद किया और बॉलीवुड का सबसे कूल विलन बन गए थे जॉन ब्राइन। अब जाते आते यहाँ पे मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, रणवीर सिंह, गोलियों की रास लीला 2013 में इस कहानी को रिलीज किया गया, और धमाकेदार गन फायरिंग एंट्री और एनर्जी से भरी पर्सनालिटी, रणवीर का फुल ऑन पावर हाउस परफॉर्मर होना प्रूफ हो गया था इस कहानी में और इस कहानी की एंट्री के साथ। चलिए दोस्तों, वैसे एक मैं नाम और ले ही देता हूँ, विकी कौशल का उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, हाउस द जोश, ये डायलॉग बॉस इतना ज्यादा वायरल हुआ कि आज भी इस डायलॉग को लोग अपनी रील्स तक में यूज किया करते हैं। वैसे डायलॉग जब हाउस द जोश के साथ कमेंडो स्टाइल एंट्री हुई विकी कौशल की, तो सुपरस्टार ट्रांसफॉर्मेशन रही उनके करियर। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चाएं तो लेकर के आता ही रहूंगा, उससे पहले एक और खूब चर्चा।

0: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी मेंटल हेल्थ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसा हमारे को पिक्चरों में मूवीज में दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस्ड इंसान है या जिसका मूड लो है वो एक कोने में बैठ के रोता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिसको डिप्रेशन होता है या मूड लो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। वो अपने काम पे भी जाता है, स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता है, घर पे भी ध्यान रहता है, बस उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वो कुछ भी मन से नहीं करता, खुश होकर नहीं करता, ओवर थिंकिंग रहती है उसको। और ज्यादातर ओवर थिंकिंग में वो हमेशा नेगेटिव आउटकम ही सोचता है। जब हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा तो हम पॉजिटिवली कैसे सोच पाएंगे? हमारे को हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो तुरंत जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकाट्रिस्ट से मिले। डॉक्टर कॉलिंग।
1: अरे है ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

एक बार फिर से लौट आया हूँ मैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। मैं मोनिका। और दोस्तों अगर देखिए बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड सिर्फ मूवीज एक्टर्स और डायलॉग्स के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ मूवी के टाइटल्स भी कई बार इतने ज्यादा हटके होते हैं जिसे सुनकर लगता है कि भाई ये क्या था। तो चलिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही टाइटल्स के बारे में जहाँ सुनकर के आप हंसी से लोटपोट हो जाने वाले हैं और स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ज्यादा ही हटके नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले बात करूँ 1971 में रिलीज की गई कहानी जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी पर टाइटल इतना अजीब था तो लोगों को लगा कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी तो नहीं होने वाली। आगे बात करते हैं बॉलीवुड के ऐसी एक और टाइटल के बारे में जो कि 1988 में कहानी को रिलीज किया गया जैसे कहानी का नाम था पाप को जलाकर राख कर दूंगा। एक प्रॉपर मसाला फिल्म जिसमें रिवेंज ड्रामा और एक्शन था और टाइटल इतना ज्यादा ड्रामेटिक था लग रहा था भाई यहाँ पे एक्शन के अलावा और कुछ होना ही नहीं वाला। और अब यहाँ बात करते हैं ऐसे एक और टाइटल के बारे में जहाँ लग रहा था कि भैया मूवी का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस टाइटल से। टाइटल का नाम है मटरू की बिजली का मंडोला जिसको 2013 में रिलीज किया गया। बॉलीवुड में कभी कभी मूवी का टाइटल ऐसा होता ना कि भैया हर कोई हैरान में रह जाते हैं भाई है क्या मूवी में बताना क्या चाहते हो। और मूवी रिलीजिंग के दौरान लोगों को कहानी अच्छी भी लगती है लेकिन आखिर में हर कोई यही सोचता है कि भैया टाइटल का क्या कनेक्शन था इस कहानी से। और ये जाते जाते मैं एक कहानी का नाम और लेना चाहूंगा लाली की शादी में लड्डू दीवाना। 2017 में इस कहानी को रिलीज किया गया था। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें विवान शाह और अक्षा हसन नजर आए थे और टाइटल की अगर बात की जाए तो भाई इतना था डिफरेंट टाइटल है इतना कुछ हटके टाइटल है जैसे कि रेडियो महारानी को हटके है और लोगों को लगा भैया टाइटल जैसा है कि कहानी भी इतनी ज्यादा घूमी फिरी नहीं होने वाली कोई टाइटल से किसी को समझ नहीं आया कि भैया कहानी में एग्जैक्टली होने ही वाला है। लेकिन जब कहानी को रिलीज किया गया लगा भैया कहानी बिल्कुल सीरियसली ट्रैक पर चल रही थी जो टाइटल था वो कुछ ज्यादा ही घुमा दिया गया। बाकी देखिए चलिए कभी डायलॉग्स ट्रेंडिंग में रहते हैं तो कभी गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं यही कुछ ऐसे टाइटल्स हैं मूवी के जहां मूवी की कहानी से ज्यादा लोगों ने टाइटल के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। बाकी ऐसी और भी ढेरों बातें चर्चा लेकर के आता रहूंगा। उससे पहले सुना देता हूँ एक और बढ़िया सा गाना।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

तेजी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो याद के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों आज सिनेमा के गलियारे से हमने बहुत चर्चाएं करी, कुछ सिल्वर स्क्रीन की, ओटी प्लेटफॉर्म की, तो कुछ टीवी स्क्रीन की, नई कहानियां, नई जोड़ियां और कुछ ऐसी कहानियां जो कि आज तक दिलों में जिंदा है। रिलीज हुए बेशक काफी साल हुए और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का प्यारा सा बंधन, भाई बहन का प्यारा सा त्यौहार, एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन को। और फिर अब यहाँ से वक्त हो चला है जाने का और कुछ नया क्रिस्पी आप सबके लिए आने वाला एक सरप्राइज गिफ्ट। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए रेडियो महारानी 9.6 FM को छटके और जाते जाते ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: ओए मेरा चार्जर कहाँ है?
1: जो मेरा चार्जर था कल।
0: अरे अभी इमरजेंसी है, 1% बैटरी है।
1: अच्छा जब मेरी 1% थी तब तो तू बोला था कि भगवान का नाम ले।
0: यार चार्जर दे दो।
1: एक काम कर।
0: क्या?
1: कल जो मेरी चॉकलेट खाई थी ना उसकी शोक सभा मना ले।
0: मतलब चार्जर नहीं मिलेगा?
1: मिलेगा, रेंट पर।
2: तारा ना दिसक या चन्न खो जावे तन्नो संग रखना।
3: भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। चीजें घर की होती है लेकिन ओनरशिप पर्सनल होती है। इसी प्यारी तकरार और बेशुमार प्यार के साथ 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी रख

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: लवर्स।
1: कभी कभी ना बस मन करता है कि कोई सामने बैठा हो, कुछ पूछे नहीं, कोई एडवाइस ना दे, बस थोड़ी देर बात करे और मूड हल्का हो जाए। तो चलिए आज वो काम मैं कर देती हूँ। हेलो फरीदाबाद, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं द हैप्पी आवर्स 89.6 रेडियो महारानी पर। अब हैप्पी आवर्स का मतलब है खुश होना, और आपको खुश रखने की जिम्मेदारी अगले 2 घंटे के लिए मेरी है, क्योंकि अगले 2 घंटे बिल्कुल अपनी वाली गपशप होगी। थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप सभी को बताऊंगी, और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको सुन के लगेगा कि यार मेरे साथ ये रोज होता है। और सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आज मेरे जेंजी डिक्शनरी के पिटारे में क्या है। आज मेरी डिक्शनरी में क्या है, क्योंकि मैं भी एक जेंजी हूँ ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि हम जेंजीज को ना इससे

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: Happy Hours।
2: ओके, सो मैं खुद एक जेंजी हूँ, तो एक चीज तो मैं मान ही सकती हूँ कि हम लोगों ने ना नॉर्मल बात करने के भी नए नए वर्ड्स बना रखे हैं, क्योंकि पूरी बात कहने से अच्छा है उसको शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि हम आलसी भी है ना। और मुझ जैसा आलसी इंसान मिल जाए जो पूरी बात रखने में बहुत आलस खाता है, तो उसके लिए ये Gen Z slangs बहुत यूजफुल होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी डिक्शनरी अभी अपग्रेड होना बाकी है। और ऐसा ही एक वर्ड निकल के आया है जो मेरी डिक्शनरी में अभी तक नहीं था, लेकिन अब मैं इसको ऐड कर लूंगी और आपकी डिक्शनरी में भी ऐड करवाऊंगी। और वर्ड है YOLO, यानी कि यू ओनली लिव वंस। वो कहते हैं ना, हम एक बार जीते हैं, एक बार

मिलेगी दोबारा, क्योंकि इसमें ये जो चिल वाइफ दिखाई ना, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप, नए एक्सपीरियंसेस, अपने फियर्स को फेस करना और हर चीज को बाद में कर लेंगे बोल के पोस्टपोन ना करना, तो हम जेंजीज ने इतनी बड़ी फिलॉसफी को छोटे से वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया और वो वर्ड योलो है। और अगर आप भी मेरी तरह जेंजी हैं और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई जेंजी स्लैंग्स यूज करते हैं तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। नंबर है 9654896896। दोबारा बता देती हूँ, नंबर है 9654896896। और अब वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद बात करेंगे जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, समझ गए ना आप? जी हाँ, मीम्स की, जी हाँ मीम्स की। तब तक आप ये गाना एंजॉय कीजिए और स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: ओए, मेरा चार्जर कहाँ है?
1: जो मेरा चार्जर था कल।
0: अरे अभी इमरजेंसी है, 1% बैटरी है।
1: अच्छा, जब मेरी 1% थी तब तो तू बोला था कि भगवान का नाम ले।
0: यार चार्जर दे दो।
1: एक काम कर।
0: क्या?
1: कल जो मेरी चॉकलेट खाई थी ना उसकी शोक सभा मना ले।
0: मतलब चार्जर नहीं मिलेगा?
1: मिलेगा, रेंट पर।
2: तारा ना दिसक या चन्न खो जावे तनो संग रखना।
3: भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। चीजें घर की होती है लेकिन ओनरशिप पर्सनल होती है। इसी प्यारी तकरार और बेशुमार प्यार के साथ 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से आप सभी को हैप्पी

जब से ये AI आया है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद ना शादी के जो मंत्र वंत्र होते हैं ना, वो भी AI पढ़ने लगेगा। और मैं ये चीज अपनी शादी के लिए इमेजिन करती हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो क्या शादी होगी एकदम मेमोरेबल। खैर, और इसी शादी को लेकर याद आया कि समय रहना की ना AI जनरेटेड वेडिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि एक पूरी शादी जिसमें समय रहना, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, साहिबा बाली और रणबीर अलाबादिया जैसे क्रिएटर्स नजर आ रहे हैं। पर ट्विस्ट ये है कि असलियत में शादी नहीं हुई है, ये शादी AI ने करवाई है, क्योंकि ये वीडियो AI जनरेटेड है। और ये वीडियो मुझे इतना रियलिस्टिक लगा कि मैंने समय का पूरा अकाउंट स्क्रॉल कर लिया, उसकी स्टोरीज देख ली कि एक्चुअल में शादी हो गई है क्या, ये न्यूज मुझे इतनी लेट क्यों पता लग रही है। और अब AI का यही तो कमाल है कि फोटो वीडियो सब कुछ इतना रियल बना रहा है कि सामने वाला एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाए कि ये रियल पर्सन है कि AI जनरेटेड। वैसे समय भाई की शादी तो AI ने करवा दी, अब रियल में कब होती है ये तो वही बता सकते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद मिलते हैं वही जो आसपास हमेशा भटकते रहते हैं, जी हाँ, चार लोग क्या कहेंगे में। तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

0: कुछ हटके।
1: Around the 10, what happened to 10?

आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जिंदगी के असली सीसीटीवी कैमरा कौन है? मुझे तो ये चार लोग ही लगते हैं, क्योंकि ना नया करियर चूज करना हो, कुछ अलग पहनना हो, सोलो ट्रिप का प्लान हो, हर जगह ये चार लोग बिना इनविटेशन के पहुंच जाते हैं। हमने बुलाया, हमने तो नहीं बताया आपको। खैर, हमारे घर वाले भी कम नहीं है ना, हर चीज तो इन लोगों को बतानी होती है, फिर ये लोग अपने ओपिनियन लेकर आ जाते हैं। और जो दो चार लोग बोलेंगे भी तो इनकी ओपिनियन परमानेंट थोड़ी होती है, आज आपको बोलेंगे, कल किसी और को जाकर बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उनकी अप्रूवल के चक्कर में ना हम अपने ड्रीम्स, अपनी चॉइसेस और अपनी खुशी को पीछे कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ही वही चलता रहता है कि अगर मैंने ये कर दिया बिना किसी परमिशन के तो ये क्या ही सोचेंगे। लेकिन हाँ, अगली बार ये दिमाग में आए ना कि लोग क्या कहेंगे, तो एक बार खुद से पूछ लेना कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। और हाँ, अगर आप अपने ओपिनियंस पे चलेंगे तो आपकी ही जिंदगी खूबसूरत होगी। तो अब आपका डिसीजन है कि लोगों की सुननी है या अपने मन की, क्योंकि आखिर में लोगों को तो बस बात करनी है, जिंदगी तो आपको जीनी है ना। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर ये लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं तो मेरी EMI वगैरह भर दें यार, बहुत ज्यादा हो गई है। फिलहाल वक्त हो गया है एक गाने का, गाने के बाद मिलते हैं पॉपकॉर्न अपडेट में, देखते हैं आज क्या पक रहा है बॉलीवुड में, बताऊंगी थोड़ी देर में। तब तक के लिए ये गाना आपके लिए,

0: पतंजलि।
1: हाँ जी, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर ना पॉकेट पर तो असर पड़ता है, लेकिन ना आज घर की किचन पर भी असर पड़ने वाला है। आज आपका बजट हिलने वाला है, बिकॉज जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो ना हम इंडियंस की प्रॉब्लम है, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं ना, आप चाहे ना कुछ भी खिला लो यार, लेकिन जब तक चाय नहीं पिला देना, इनको ऐसे लगता है इनकी खातिरदारी नहीं। खास कर अगर मैं बात करूँ फूफा जी की, इनका तो मुँह ऐसा हमेशा फूला होता है ना। तो देखिए, आज फूफा जी को बोल दीजिएगा कि ज्यादा चाय ना पिए, क्योंकि हो गई है चीनी महंगी। चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है यार। पटना के होलसेल मार्केट में पिछले एक महीने में शुगर के रेट्स काफी बढ़े हैं और रिटेल में चीनी 65 से 70 रुपए पर केजी तक पहुंच गई है। कसर सिर्फ चीनी पर नहीं भाई, हमारी मिठाइयों पर भी देखने को पड़ेगा। और साथ ही चाय के जो रेट्स है ना, वो भी ज्यादा हाई हो गए हैं। यानी कि जो चाय आपको पहले 10 रुपए की मिलती थी ना, वो चाय अब आपको 15 और 20 रुपए की मिलेगी। तो जितने भी चाय पगलु है ना बेचारे, उनकी जिंदगी में ना ऐसा अकाल आने वाला है ये चीनी की वजह से। और ये ना शायद उन्हीं लोगों का श्राप है जो ये कहते थे ना कि हम तो शुगर ही नहीं खाते, हमें शुगर पसंद नहीं है, शुगर खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो भाई देखो, भगवान ने यहाँ पे तथास्तु बोल दिया। भगवान ने बोल दिया कि अब मैं जो चीनी थी ना, जिसकी वैल्यू इतनी कम कर दी थी आप लोगों ने, अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ताकि हर कोई इसे अफोर्ड भी ना कर पाए। तो भाई देखो, जो लोग चाय पगलू थे ना, अब अपनी चाय कम कर दो यार, क्योंकि पूरी सैलरी चली जाएगी चीनी जी पर। और इसी के साथ ही जितनी भी मिठाइयाँ आज आ रही है ना, उन मिठाइयों को ना थोड़ा स्टोर करके रख लेना, ताकि जब जब मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, तो फ्रिज से निकाल कर खा लो। और फूफा जी को बोल देना ज्यादा चाय ना पिए आज। और साथ ही सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM।

अच्छा, आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा दोस्त है ना जो हर हॉरर मूवी के बीच में बोलता है कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता भूत वूत में, तो एक बार ना उसको ये मूवी दिखा देना। स्टोरी है चार दोस्तों की जो फेक बाबा और घोस्ट हंटर्स का सच सामने लाते हैं। इनका मानना है कि भूत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन फिर इनकी मुलाकात होती है एक घोस्ट हंटर से जो देता है एक अजीब सा चैलेंज, और वो चैलेंज होता है सिर्फ 3 दिन का। और वो घोस्ट हंटर कहता है कि अगर 3 दिन में कोई आत्मा नजर नहीं आई तो 4th दिन तुम जो बोलोगे वही होगा। और बस उस चैलेंज के बाद स्टोरी ऐसी पलटती है कि हर कुछ देर में आपकी थ्योरी बदलती रहेगी इसको देखने के बाद, क्योंकि आपको जब लगेगा ना कि अब मुझे ये सीन समझ आ गया, ये मूवी उसी के बाद एक नया ट्विस्ट लेगी। और एंडिंग जैसा आप गेस करोगे ना उसके बिल्कुल अपोजिट है। और वैसे भी हम जो एंडिंग सोच रहे होते हैं ना वो मूवी में कभी नहीं होती। तो मिस्ट्री, सुपर नेचुरल और माइंड बेंडिंग थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी जरूर देखना। और मूवी का नाम है

ईशा, और ये Amazon प्राइम और यूट्यूब पर अवेलेबल है। और मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आपको भी 3 दिन का ये चैलेंज मिले तो एक्सेप्ट करोगे या पहले ही भाग जाओगे? क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि मुझे भूत वूत से डर नहीं लगता, उसको तो सबसे पहले देखनी चाहिए ये मूवी। खैर, वक्त हो गया एक गाने का, और गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज स्टाइल स्टूडियो में नया क्या है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आया।

0: गया?
1: मुझे क्या पता।
0: अच्छा, और मुंह पे क्रीम किसकी लगी है?
1: इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
0: CBI बुलाऊं?
1: देखो, बिना सबूत के इल्जाम ना लगाओ।
0: सबूत तेरा मुंह है।
2: सुबह खूब झगड़ते, साथ फिर खाना खाए।
3: घर में कुछ भी गायब हो जाए, पहला शक हमेशा भाई पर ही होता है। इसी हंसी मजाक और यादों से भरे रिश्ते के नाम 89.6 रेडियो महारानी की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।

अच्छा, ब्राइडल शॉपिंग में सबसे पहला सवाल यही होता है ना कि लहंगा फाइनल किया क्या? लेकिन अगर आप ब्राइड टू भी हैं तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि 2026 में ब्राइडल फैशन में एक मजेदार शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि लहंगे के साथ साथ साड़ीज भी ब्राइड्स की फेवरेट बनती जा रही हैं। और ऑनेस्टली साड़ी का ना अपना ही चार्म है। हैवी लहंगे के कंपैरिजन में साड़ी में मूवमेंट इजी होती है, कंफर्टेबल फील होता है, और शादी के पूरे फंक्शन में आप थोड़ा फ्रीली मूव भी कर सकती हैं। जैसे कि रश्मिका मंदाना ने भी अपनी शादी में साड़ी ही पहनी थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और अगर स्टाइलिंग की बात करी जाए तो ट्रेडिशनल रैप रखो तो वो एलिगेंट, और स्टेटमेंट ब्लाउज और ज्वेलरी के साथ जाओ तो एकदम मॉडर्न ब्राइडल लुक आएगा। मतलब ब्राइड बनना है तो जरूरी नहीं कि आप लहंगे में ही ब्राइडल लगोगे, एक ब्यूटीफुल साड़ी भी पूरी ब्राइडल वाइब दे सकती है। तो फ्यूचर ब्राइड, तो अगर आपकी शादी की शॉपिंग चल रही है तो साड़ी को जरूर लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल वक्त हो गया एक गाने का, गाने के बाद चलेंगे अपनी फरीदाबाद की गलियों में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: ध्यान देने की है कि एयर पोल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: शिंदिया कर सुन पे मेरी
3: किया बेबे
2: उत्तर ग्वालियर व्यास को बथेरे कम कर फिर तो अपने व्या दे मेरे लड्डू खवा दे
3: ओ हजे किया बीबी बथेरी उम्र पई है
2: उत्तर व्या दे विच की बोले कुड़िया ने खाना कोई पसंद अपने ने हुन तो तेरे भरा ने भी करा लिया तू ही रह गया
4: ओ करा ला छोटे वीरा खवा दे बेबे नु व्या दे लड्डू
3: ओ भाई तू भी मैं चलिया अपने कबूतरा नु दाने पाऊं
4: ओए तू कबूतरी देखदा रही तू कबूतरी ना देखी
5: बेबे आई कर तू नहीं मानदा फिर बापू नु करा देने
2: और चल मैं तो मेरे नाल ही टीचर करी।

अच्छा हमारे साथ अक्सर ये होता है ना कि दोस्तों के साथ बैठकर अच्छा सा कुछ खाओ, अच्छा सा कुछ पियो और बिल देखने के बाद हमें हार्ट अटैक भी ना आए। तो आज का फरीदाबाद लोकल बस फूडीज के नाम है, आप सेक्टर 28 गीता कॉलोनी के पास हैं, तो एक जगह ट्राई कर सकते हैं जिसका नाम है द बेटर फूड। यहाँ का गाना मुझे बहुत पसंद आया और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके प्राइजेस बहुत रीजनेबल हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाएंगे तो आपको अपनी जेब से पैसे देने में बिल्कुल भी दुख नहीं होगा क्योंकि ये इतना कॉस्टली नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ऑर्डर करना चाहिए यहाँ पे, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन जो मेरा होगा वो है रेड सॉस पास्ता और कोल्ड कॉफी। वाह वाह वाह, खाके जो आनंद आया था ना मैं बता नहीं सकती। और इसकी क्वांटिटी भी इतनी सही थी कि आपका पेट भर जाए आराम से। तो दोस्तों के साथ अगर कोई आपका प्लान बन रहा है तो आप ये जगह ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके बताइएगा कि आपको वहां। और आप बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

अंग्रेजी में ना एक कहावत है कि अ जर्नी ऑफ अ थाउजेंड माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, मतलब हजारों माइल्स का सफर भी एक छोटे से स्टेप से शुरू होता है। और सच में लाइफ में ना हर बड़ा चेंज भी ऐसे ही आता है। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि जब परफेक्ट टाइम मिलेगा तब स्टार्ट करूंगा, थोड़ा और रेडी हो जाऊं, थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊं, फिर इसको स्टार्ट करूंगा। लेकिन परफेक्ट टाइम का वेट करते करते ना स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो अगर आपको जिम स्टार्ट करना है, कोई कोर्स करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी से बात करके अपना रिश्ता ठीक करना है, तो पूरी जर्नी का प्रेशर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। बस एक स्टेप लीजिए, हो सकता है वही छोटा सा स्टेप कुछ महीनों बाद आपको वहाँ खड़ा कर दे जहाँ आज आप सिर्फ पहुँचने का सपना देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना याद रखिए कि स्टार्ट स्मॉल बट एट लीस्ट स्टार्ट। और इसी थॉट के साथ द हैप्पी आवर्स को करते हैं शट डाउन। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे थे 89.6 रेडियो महारानी। कल फिर मिलूंगी इसी वक्त, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी।

हाँ जी, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर ना पॉकेट पर तो असर पड़ता है, लेकिन ना आज घर की किचन पर भी असर पड़ने वाला है। आज आपका बजट हिलने वाला है, बिकॉज जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो ना हम इंडियंस की ही प्रॉब्लम है। अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं ना, आप चाहे ना कुछ भी खिला लो यार, लेकिन जब तक चाय नहीं पिला देना, इनको ऐसे लगता है इनकी खातिरदारी नहीं। खास कर अगर मैं बात करूँ फूफा जी की, इनका तो मुँह ऐसा हमेशा फूला होता है ना। तो देखिए, आज फूफा जी को बोल दीजिएगा कि ज्यादा चाय ना पिए, क्योंकि हो गई है चीनी महंगी। चीनी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है यार। पटना के होलसेल मार्केट में पिछले एक महीने में शुगर के रेट्स काफी बढ़े हैं और रिटेल में चीनी 65 से 70 रुपए पर केजी तक पहुंच गई है। कसर सिर्फ चीनी पर नहीं भाई, हमारी मिठाइयों पर भी देखने को पड़ेगा। और साथ ही चाय के जो रेट्स है ना, वो भी ज्यादा हाई हो गए हैं। यानी कि जो चाय आपको पहले 10 रुपए की मिलती थी ना, वो चाय अब आपको 15 और 20 रुपए की मिलेगी। तो जितने भी चाय पगलू है ना बेचारे, उनकी जिंदगी में ना ऐसा अकाल आने वाला है ये चीनी की वजह से। और ये ना शायद उन्हीं लोगों का श्राप है जो ये कहते थे ना कि हम तो शुगर ही नहीं खाते, हमें शुगर पसंद नहीं है, शुगर खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो भाई देखो, भगवान ने यहाँ पे तथास्तु बोल दिया। भगवान ने बोल दिया कि अब मैं जो चीनी थी ना, जिसकी वैल्यू इतनी कम कर दी थी आप लोगों ने, अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ताकि हर कोई इसे अफोर्ड भी ना कर पाए। तो भाई देखो, जो लोग चाय पगलू थे ना, अब अपनी चाय कम कर दो यार, क्योंकि पूरी सैलरी चली जाएगी चीनी जी पर। और इसी के साथ ही जितनी भी मिठाइयाँ आज आ रही है ना, उन मिठाइयों को ना थोड़ा स्टोर करके रख लेना, ताकि जब जब मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, तो फ्रिज से निकाल कर खा लो। और फूफा जी को बोल देना ज्यादा चाय ना पिए आज। और साथ ही सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: 69.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: भी पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
2: है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
1: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल

0: बाजी पार्टी की रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल, बिल्कुल एक ही चीज इस टाइम अनस्टॉपेबल है, वो है हमारी जेब। क्योंकि रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जेब में से पैसा अनस्टॉपेबल जा रहा है, बहन के अकाउंट में अनस्टॉपेबल आ रहा है। कैसे? मेरे ही अकाउंट से तो गया है।

0: सारा का सारा पैसा। रेडियो महारानी 89.6 पर रक्षाबंधन पर आप सभी का स्वागत है। एंड पता है ना मैं कौन हूँ? नहीं पता क्या?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: जी हाँ बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। एंड देखो, आज की शाम हो चुकी है, रक्षाबंधन इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, और काफ़ी सारे भाई लोग अभी आज रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहनों से नहीं मिल पाए बिकॉज वो सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं। हैट्स ऑफ है उनको भी, सलाम है उनके जज्बे को जो वो पूरे साल सारे त्योहारों को त्याग कर सरहद पर खड़े रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों की ये रक्षाबंधन का ये त्यौहार कैसा गया ये बता दीजिएगा। और इसी के साथ साथ यार मुझे एक चीज़ बता दो, फरीदाबाद में बढ़िया घेवर कहाँ मिलेंगे? क्योंकि जो बढ़िया बढ़िया दुकानें थी ना उनमें सब में खत्म हो चुका है, मैंने खूब ट्राई कर लिया और कल तो दुकानों पे ऐसे भीड़ थी जैसे कि मानो फ्री में बट रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता था, देखो यार अब मिठाइयाँ खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट, अब कुछ दिनों तक तो मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी, जन्माष्टमी आ रही है उस दिन थोड़ा बहुत हम लोगों को प्रसाद मिल जाएगा, उसके बाद फिर गणेश चतुर्थी में मोदक मिल जाएंगे, फिर उसके बाद श्राद्ध आ जाएंगे, श्राद्ध के बाद नवरात्रे लग जाएंगे, नवरात्रों के बाद ऐसे ही पूरे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर त्योहार ही त्योहार हैं। और इसी के साथ साथ आज का त्यौहार रक्षाबंधन का आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ अगले चार घंटे तक आप सभी के साथ बैठा हूँ 5 से 9, तब तक के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने चला रहा हूँ। सुनिए इस गाने को, बस मैं यूं गया और यूं आया, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को कि 4 घंटे कैसे खत्म हो गए।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मैंने आप सभी से पूछा कि एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जिसके पास तीन दिल होते हैं। अगर मेरे पास तीन दिल होते फिर तो मैं क्या क्या नहीं कर लेता। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जिस प्राणी की मैं बात कर रहा हूं तो वो प्राणी है ऑक्टोपस। बचपन से सुना है इसके पास 8 हाथ होते हैं।

0: जो दिल होते हैं वो इसके गिल्स तक ब्लड पहुंचाते हैं, और जो तीसरा दिल होता है वो पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ऑक्टोपस जब तैर रहा होता है ना, उस टाइम उसका एक दिल काम करना ही बंद कर देता है। ऐसा क्यों? ये तो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं वैसे भी। और अगर बात करें कि इंसानों के पास तीन दिल होते ना, फिर मैं बता रहा हूँ रोज फ्राइड चीज़ें खाते, क्योंकि फ्राइड चीज़ें खाने से ना दिल पे असर पड़ सकता है। और जब तीन दिल होते फिर तो हम सोचते चलो एक तो बचा है अभी, दो तो बचे हैं अभी, मतलब कुछ तो ऐसा रहता ना। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, ऐसे ही और भी बढ़िया बढ़िया बातें लेकर आऊँगा। और हाँ, आप लोग बताओ पहले कि क्या आप लोगों को ये चीज़ पता थी, क्या ये चीज़ आप लोगों को मालूम थी पहले से? नहीं ना, तो बस सुनते जाइए रेडियो महारानी, ऐसी और भी चीज़ें करेंगे। और हाँ, एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि गलती से अगर मान लो एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो गया तो आप क्या करोगे? आप भी शायद ये बोलोगे, दिल में अब कोई ख्याल ही नहीं है। हाँ, बस वही गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, मगर इसकी आवाज़ बढ़ा दी जाए मान पानू की आवाज़ में आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी पर।
1: दिल

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन,

होए होए, इतना प्यारा गाना। और ये गाना आप चाहो तो फिर से सुन सकते हो। कैसे? अरे सुन सकते हो मतलब YouTube पे है आपके पास, इंटरनेट की एक्सेस है आपके पास। और एक वो ज़माना था जब हम लोग टीवी में म्यूज़िक सुनते थे, फिर उसके बाद एक नंबर आता था, उस पर कॉल करके बोलते थे कि हमें ये गाना सुनना है, हम फरीदाबाद से यहाँ से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ यार, आजकल इंटरनेट ही ज़िंदगी बन चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी इंटरनेट की वजह से चल रही है और कुछ लोगों की ज़िंदगी ही इंटरनेट बन चुकी है। अब देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ, बैंकिंग इंटरनेट से हो रही है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप पैसे ट्रांसफ़र तो कर नहीं पाओगे। UPI चला रहे हो, उसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। फूड डिलीवरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आज की डेट में, हर इंसान को खाना मंगाना है और वो इंसान फूड डिलीवरी के लिए भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है। मैप्स में वैसे GPS होता है, बट उसके अलावा हमें GPRS भी तो चाहिए होता है, मतलब कि इंटरनेट भी चाहिए होता है। UPI है, सोशल मीडिया भी है। अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? सब चीज़ रुक जाएगी, बैंकिंग, फूड डिलीवरी, मैप्स, UPI, सोशल मीडिया, सब कुछ। और कई लोगों को अपने फ़ोन नंबर्स तक याद नहीं होंगे। ये रियलिटी है। देखो हम लोगों को तो याद है खैर, बट अभी की जनरेशन है जो नई वाली है, इनको तो शायद ही अपने फ़ोन नंबर याद होंगे। खैर याद होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, मगर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, शायद लोग पहली बार फिर उसके बाद पड़ोसियों से बात करना शुरू कर देंगे। शायद हो सकता है कि फैमिली मीटिंग में, फैमिली डिनर पे उस टाइम कोई अपना फ़ोन नहीं चला रहा होगा क्योंकि इंटरनेट ही नहीं होगा। जस्ट इमेजिन एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो, फिर क्या होगा? इंटरनेट बंद होते ही क्या चीज़ मिस करोगे आप लोग? देखो मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं बस वही है, सोशल मीडिया ही मिस करूँगा, उसके अलावा क्या है? फेवरेट टाइम पास, बेस्ट टाइम पास, वैसे बता दूँ आपको, एंड रील नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जो लोग रील और शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं ना, उन लोगों के लिए खासकर ये बात बोली है मैंने। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए प्यारा सा गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो, रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

क्या आप लोग कभी भी घूमने का सोचते हो? और अगर घूमने का सोचते हो सिर्फ इंडिया में घूमने का सोचते हो, और अगर सिर्फ इंडिया में घूमने का सोचते हो तो क्या कभी श्रीनगर गए हो, कश्मीर में? स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आई वाज गोइंग थ्रू दिस द डल लेक वाला वीडियो, सारी वीडियोस देखी मैंने, सारी फोटोज देखी मैंने, बड़ी अमेजिंग जगह है। सर्दियों में जम जाती है वो डल लेक, मगर बहुत ही सुंदर जगह है वो। और बता दूं आपको एक फैक्ट है कि श्रीनगर के डल लेक में दुनिया का एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। उसका काम क्या होता होगा, मतलब क्यों? मेरा सबसे मन में पहला सवाल यही आया कि क्यों है, फिर दूसरी चीज चलो है तो अच्छी बात है, मगर मुझे अभी तक पता क्यों नहीं था। तो आज पता लग गया मुझे कि हाँ, श्रीनगर के डल लेक में दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, और ये पोस्ट ऑफिस पानी पर तैरता है और आज भी लिटरली आज भी काम करता है, और टूरिस्ट यहाँ से पोस्ट कार्ड्स भेजते हैं। मतलब देखो, अगर आप लोग घूमने जा रहे हो तो आप लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचोगे, मतलब जैसे ही आप लोग डल लेक पर पहुँचोगे, तो आप वहाँ से अपने पोस्ट कार्ड्स भेज सकते हो अपने चाहने वालों को। मगर क्यों? फिर से सवाल वही आ रहा है मेरे मन में। चलो आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों ने ऐसा कुछ कभी सुना था? अगर सुना था तो क्या आप लोग कभी गए हो, और अगर कभी गए हो तो क्या आप लोगों ने पोस्ट कार्ड भेजा है वहाँ जाके? हाँ या ना, बताइएगा जरूर। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारी बातें और खूब सारे गाने मैं लेकर आता रहूंगा, और उन्हीं में से ये गाना जलेबी बेबी, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: कश्यप।
1: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
2: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
3: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाली भर के नड़ा।

एआई का जमाना है, एआई का जमाना है, हर किसी के जुबान पर यही वर्ड चल रहे हैं कि एआई का जमाना है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब देखो एक सवाल उठता है यहाँ पे, और वो ये है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं एआई आ गया है, जॉब खा जाएगा तुम्हारी। मेरी जॉब खा सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन एआई कहाँ बना सकता है, आर्टिफिशियल है यार वो, हम तो रियल हैं आप सभी के साथ। खैर मैं आप सभी को बता दूं, एआई आज गाने बना रहा है, फोटोज एडिट कर रहा है, आर्टिकल्स तक लिख दे रहा है, कुछ जॉब्स बदलेंगी लेकिन नए करियर ऑप्शंस भी बनेंगे, ये तो रियलिटी है। क्योंकि जब कंप्यूटर आया था उस टाइम भी लोगों ने बोला था कि अब तो भैया लोगों की जॉब चली जाएगी, मगर फिर कंप्यूटर को यूज़ करने वाला कौन था? इंसान ही तो था। तो एआई को भी हम लोगों को ही यूज़ करना है, एआई खुद से कुछ काम नहीं करता, उससे करवाना पड़ता है, तो ये चीज़ हम लोगों को सीखनी पड़ेगी। तो सिंपल सा सवाल यही होता है कि क्या फ्यूचर में एआई रेडियो जॉकी बन सकता है? मैं तो बोलूँगा कि नहीं बन सकता, मगर इसी बीच एक चीज़

अगर आ गया तो शायद वो रेडियो जॉकी बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपना एक कॉमन सेंस होगा, मगर फिर उसको भी चलाने के लिए कोई इतना इंसान की तो जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता होगा कि 5 से 8 आना है, उसको थोड़ी ना पता होगा कि फरीदाबाद के लोग किस टाइम ट्रैफिक में फंसे हैं फिर नहीं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। और अगर हाँ, आप लोगों को टेंशन हो रही है अगर के AI आपकी जॉब खा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और टेंशन को निकाल फेंकिए दूर, क्योंकि गाने का नाम है टेंशन। दिलजीत दोसांझ की आवाज में सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।

आपको पता है दुनिया में ना अजीबोगरीब लॉज होते हैं, बहुत सारे लॉज हैं। इन इंडिया यू कैंट पिस इन पब्लिक बट स्टिल वी डू, मतलब आप देखते हो लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते, लोग सड़क किनारे शौच करते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड दुनिया में बोल रहा हूं ना कि बहुत अजीब अजीब लॉज हैं, तो ना स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ रहा था। स्विट्जरलैंड में एक गिनी पिग रखना इल्लीगल है। तो पहले मैं आपको बता दूं गिनी पिग होता क्या है। एक छोटा सा चूहे जैसा दिखने वाला प्राणी होता है, और आपने कार्टून्स में देखा होगा एक घूमने वाली चीज पर उसको रखा जाता है और फिर वो भागते रहता है और फिर वो बिजली जनरेट होती है, मतलब काइंड ऑफ कार्टून में देखा होगा ऐसे। तो गिनी पिग बहुत क्यूट लगते हैं देखने में, और लोग उनको पालते भी हैं, अमेरिका में पालते हैं, बहुत सारी जगह में पालते हैं, इंडिया में भी अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है, लोग गिनी पिग्स ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन। तो वो विदेश से इंडिया आते हैं, फिर उसके बाद इंडिया में आप उसे पाल सकते हो। बट स्विट्जरलैंड में एक गिनी पिग रखने पे बैन है, इलीगल है, और आपका जुर्माना हो सकता है। एक रख नहीं सकते मगर दो रख सकते हो, ये कैसी बात हुई। तो फिर वहाँ का लॉ ये कहता है, देखो गिनी पिग जो है वो एक सोशल एनिमल है, और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों से घुला मिला रहता है, और अगर ये अकेला रहा तो अकेले रहने पर डिप्रेशन में जा सकता है गिनी पिग, इसलिए वो अकेला नहीं रखा जाता, हमेशा ग्रुप में रखा जाता है। तो आप सभी से एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर इंडिया में ऐसा कोई फनी लॉ बन जाए तो क्या होएगा, मतलब क्या होना चाहिए कि अकेले बैठ के पेपर नहीं देना तो कितने सारे बच्चे पास हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के साथ और भी बातें करेंगे, और हम मुझसे बातें करनी तो नंबर है जी 9654896896। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए दिलजीत दोसांझ की आवाज में ये गाना, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: अर्ज करते हैं
0: इशान।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आज सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपने

टेक्नोलॉजी वाला एरा, मतलब साल 2026 90s में, उस टाइम गाड़ियों में टेप रिकॉर्डर नए नए आए थे। टेप रिकॉर्डर भी नहीं कहूँगा मैं उसको, ऑडियो सिस्टम कहूँगा गाड़ी के अंदर, और उसमें कैसेट डला करती थी और फिर एक बटन होता था इजेक्ट करने का, और फिर उसके बाद जो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगा होता था उसको निकाल कर घर के अंदर ले जाते थे ताकि रात को कोई चोरी ना कर ले उसको, होता था कि नहीं होता था। तो ऐसा ही सेम टू सेम अब नहीं हो सकता। अब क्या होगा, अब तो सीधे गाड़ी चोरी होगी, वैसे गाड़ी के अंदर भी काफ़ी सारी स्मार्ट चीज़ें लग चुकी है। तो टेक्नोलॉजी ने लाइफ इजी बनाई है, लेकिन नॉस्टैल्जिया भी छीन लिया है। वो कैसेट थी, कैसेट में उसकी पूरी रील निकल जाती थी बाहर को, फिर पेंसिल से हम लोग घुमाते थे उसको, और रिवाइंड करने के लिए भी पेंसिल से एक तरफ से दूसरी तरफ करते थे, है कि नहीं, याद होगा आप लोगों को सारी चीज़ें। और रिवाइंड करने के लिए एक और तरीका होता था कि बाहर निकाल के उल्टा करके वापस लगा दो तो वो रिवाइंड हो जाती थी कैसेट। तो बचपन की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें याद आती है अक्सर। तो मैं यही सवाल आप लोगों से करूँगा कि आपके मन में वो कौन सी चीज़ें बचपन की जो आज भी आपको याद आती है। साथ मिलकर बैठकर शक्तिमान देखना, या फिर रामायण देखना, या फिर हो सके तो कार्टून देखना, या फिर वो वीडियो गेम्स खेलना, बहुत सारी चीज़ें थी। नंबर है जी मेरा 9654896896। अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते रहिए। आप सभी के लिए ये गाना इसी 9.6 रेडियो महारानी पर। तुझे

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर गुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइक यू
4: आशा इस पंजाब।

0: भी पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

ये गाना ना बताने क्यों दिल को छू के पार निकल जाता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा, आप सभी के साथ एक्सप्रेस कर रहा हूं अपने आप को। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मेरा दिल है, दिल क्या कर रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है कैसे मेरी नसों के द्वारा। और अगर आप अपनी नसों को जोड़ दोगे, निकाल लो बॉडी से, मतलब आप मत निकालना, ऐसे सोचो, मन में सोचो कि आपने बॉडी से निकाल दी नसें, तो सोचो कितनी लंबी हो जाएगी, आपके घर के बराबर या फिर आपकी रोड के बराबर, घर के बाहर की रोड के बराबर, या फिर मैं बोलूं मथुरा रोड के बराबर। चलिए मैं आप सभी को बता दूं, मैं भी पढ़ के हैरान हो गया था। लगभग अगर आपकी बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स जोड़ दी जाए ना, तो 1,00,000 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे आप पूरी पृथ्वी के कम से कम 2.5 चक्कर लगाने जितना डिस्टेंस है ये पूरा। और ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप एक बार ना एक काम करना, ब्लड वेसल्स की फ़ोटो देखना, ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी इमेज, बस आप गूगल पे जाके सर्च करना, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे शरीर में कितनी सारी ब्लड वेसल्स है। और अगर एक में भी कुछ भी दिक्कत आ गई तो फिर इंसान की वाट लग जाती है कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना 89.6 रेडियो महारानी पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

जब से फोन मेरे हाथ में आया है, मेरी मम्मी की सिर्फ एक ही ख्वाब है, मैं कह रहा हूँ मम्मी की सिर्फ एक ही सपना है कि इसके फोन को आग लग जाए। आप लोगों के साथ भी होता होगा, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे आग लग जाए तेरे फोन को, और अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरे पेरेंट्स शायद खुश होंगे, फिर उसके बाद मेरे को ही सुनाएंगे कि ऐसा क्या कर रहा था तो फोन में क्या आग लग गई उसमें। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। मानो या मत मानो, हमारा फोन जो है ना वो हमारे लिए एडिक्शन बन चुका है। आप अगर एक दिन के लिए भी फोन छोड़ के देख लो, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सच में होगा। और फोन एडिक्टेड नहीं है, एडिक्शन फोन नहीं है, हमारी लत फोन नहीं है, मगर फोन के अंदर जो चीजें हैं वो हमारे लिए लत है, जैसे कि सोशल मीडिया। क्योंकि जब तक सोशल मीडिया मैं चला रहा था ना, तब तक ठीक था, अब सोशल मीडिया मुझे चला रहा है। और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी अब फेसबुक पे आ गए हैं, तो फेसबुक पे वो लोग भी रील्स देखते हैं, और जब रील्स देखने बैठते हैं ना, फिर उसके बाद वो ख़त्म कहाँ होती है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग मोमेंट्स को जीते थे, आज लोग सबसे पहले कैमरा निकालते हैं। खाना आया, कैमरा निकाला, स्नैप बनाई। आजकल की ये जनरेशन का स्नैप बनाने वाला सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है। और इसके अलावा मतलब एक तो स्नैप बना दी, दूसरी चीज़ है कि हम लोग कहीं पर भी अगर घूमने जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जाएंगे जगह पर, वहाँ पर जाके कैमरे से वीडियो बना लेंगे, अरे कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा व्यू है, वीडियो बना लेते हैं। अरे आप वीडियो बनाइए, मगर उस मोमेंट को जी के तो देखिए क्या मज़ा आता है। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, और ये जो गाना है ना इसको भी जी के देखेंगे, मतलब इसको सुनेंगे आराम से। ला रहे ये गाना मनिंदर भुट्टर की आवाज़ में रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं 24 घंटे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बहुत सारे होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। मगर अगर मैंने आप लोगों को बोला कि 24 घंटे हैं आपके पास 1 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए, तो क्या आप उसको खर्च कर पाओगे? नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना है ब्रो, खर्च करना है 1 करोड़ रुपए। अब ज़रा सोचो इस चीज़ को, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर मुझे कोई दे दे, मतलब सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए कभी, तो फिर मैं सबसे पहले क्या लूँगा? हाँ बिल्कुल, गाड़ी तो लेने ही वाले हम लोग, हो सकता है घर मिले तो घर भी ले लेंगे। वैसे घर एक दिन में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सोच रहे हो बयाना दे देंगे, फिर बयाना देने के बाद कोई इंसान मुकर गया तो फिर क्या करोगे, है ना? कुछ नहीं कर सकते। आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, मतलब वर्ल्ड टूर का टिकट आज ही खरीद लो, पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं कुछ, या फिर एक लग्जरी गाड़ी ली और फिर उसको रेंट पर चढ़ा दिया, क्योंकि फिर ज़िंदगी भर हमारा रेंट भी तो आते रहेगा ना। तो ऐसा मेरी सोच है। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या करोगे अगर एक दिन के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ खर्चे के लिए। देखो मैं ना इसमें से कम 1 लाख रुपए खाना खरीदूंगा और सब गरीब लोगों में बंटवाऊंगा, सब नीडी लोगों में बंटवाऊंगा, ताकि कोई भी इंसान इस दुनिया में भूखा ना सोए, भले ही एक दिन के लिए, बट स्टिल मैं ये ज़रूर करने वाला हूँ। तो ख्याली पुलाव है, बनाते रहते हैं, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाइए। और आप लोग सोचिए, अगर आप लोगों को 1 लाख रुपए, 1 लाख नहीं माफ़ कीजिए, 1 करोड़ रुपए मिल जाए एक दिन के लिए, तो आप लोग क्या करने वाले हो? आप एक दिन के CM बन सकते हो क्या? नायक मूवी याद आ गई मुझे। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, केसरिया ये गाना ब्रह्मास्त्र मूवी से, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

देखो शाम होती है ना, तो फिर मेरे मन में ना ऐसी ऐसी चीजें आती है, जैसे कि अभी मैं स्टूडियो में अकेला हूँ, तो अगर मैंने यहाँ म्यूजिक पूरा तरह से बंद कर दिया, मतलब अपने हेडफोन्स का अगर बंद कर दिया, तो मुझे कुछ और सुनाई नहीं देगा। फिर उसके बाद मुझे सुनाई देगी वो आवाजें जो सच में है ही नहीं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि मैं घर में अगर अकेला हूं तो फिर मुझे ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देगी जैसे कि कोई दूसरे रूम में चल रहा है, ऑल्दो वहां कोई नहीं होता, बट स्टिल मुझे लगता है। और काफी बार ऐसा होता है, दुनिया में कुछ ऐसे साउंड्स रिकॉर्ड होते हैं जिनका सोर्स आज तक मिस्ट्री बना हुआ है, और ये तो रिकॉर्ड हुए हैं। अगर मैं भी अपने घर में रिकॉर्डर लगा दूं, शायद कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा। खैर मैं जिन आवाज़ों की बात कर रहा हूं उनमें से एक आपको बताता हूं। एक है समुंदर के अंदर से आने वाली कुछ अजीब आवाज़ें हैं जिनका एग्जैक्ट सोर्स साइंटिस्ट आज भी पता नहीं लगा पाए हैं, या फिर पता लगा लिया बट कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग गूगल पर जब देखोगे ना, आप लोगों को भी लगेगा हाँ यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप लोग कभी अकेले में बैठ कर देखना, आप लोगों को ना दो तीन आवाज़ें सुनाई दे जाए ना मेरा नाम बदल देना, मैं सच बता रहा हूँ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। आई डोंट नो व्हाई, हमारा दिमाग शायद उस टाइम खाली हो जाता है, फिर वो इमेजिनेशन, तो आपको पता है हमारे दिमाग की इतनी अच्छी होती है, फिर वो इमेजिन करने लग जाता है, और फिर हम लोगों को आवाज़ें ऐसा लगता है कि सुनाई दे रही है मगर वो सुनाई नहीं दे रही होती, वो हमारा दिमाग जनरेट कर रहा होता है साउंड। अगर अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि एम्बुलेंस की आवाज़ कैसी होती है, तो आप लोगों के मन में वो साउंड आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए साउंड से याद आए, गाना चला देते हैं, और जो बैकग्राउंड में साउंड बज रहा है इसको थोड़ा अप कर दिया जाए। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

0: आपको पता है एक ना ट्रेलर आया है और ट्रेलर का नाम है हैवान, और वो पता है कौन सी मूवी का है, मतलब कौन से एक्टर का है, सोचो जरा। एक ऐसा एक्टर जो साल में 4 से 5 मूवीज दे देता है हम सभी को।
1: रेडियो का गौरव।
0: जी हाँ, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ट्रेलर है हैवान का। नहीं, एक्टर का नाम हैवान नहीं है, एक्टर का नाम है वन एंड ओनली, यू ऑल नो, अक्षय कुमार। हैवान का एक ट्रेलर आया है और लोग कह रहे बड़ा ही खौफनाक है, लोग कह रहे अक्षय कुमार फिर से एक बैड रोल में दिखाई दे रहे हैं, इस बार मर्डरर दिखाई दे रहे हैं आई गेस, जहां तक अभी ट्रेलर देखा है। बट सच बोलूं तो मुझे ट्रेलर समझ नहीं आया, फिर मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ जिसको समझ नहीं आया। फिर जो गीत आती है ना इश्कबाजियां वाली, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा देख क्या ट्रेलर तेरे को समझ आ रहा है, तो उसने भी देखा, उसने पूरा देखा, कहती समझ तो नहीं आ रहा बट इंटरेस्टिंग सा कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। हैवान का ये ट्रेलर आउट हो गया है और इसमें अक्षय कुमार को अब विलन का ही किरदार मिला है, और लोग भी ये कह रहे हैं अब तो उन्हें विलन ही बनना चाहिए, और सब यही कह रहे हैं कि इसी चीज़ की तो कमी थी, अक्की इज बैक। बट मुझे ऐसा लगता है देखो अक्षय कुमार ना पता कौन से रोल में फिट बैठते हैं, गब्बर इज बैक, याद है ना वो मूवी गब्बर। हाँ, तो वैसे टाइप का ही कोई रोल दिखाई दे रहा है, और इसमें एक और सरप्राइज एलिमेंट है, सरप्राइज एलिमेंट इज सैफ अली खान भी इसमें दिखाई दे रहे हैं और एक ब्लाइंड का वो रोल निभा रहे हैं। एंड जहाँ तक ट्रेलर दिख रहा है, ट्रेलर में तो समझ आ रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं ये मर्डर मिस्ट्री है, और मर्डरर कौन है ये एंड तक समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं कि मूवी कैसी जाने वाली है, प्रियदर्शन की ये मूवी रहने वाली है एंड 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आ जाएगी, तो मैं तो देखने जरूर जाऊंगा इस बार 11 सितंबर को। बट आप लोग बताइए आप लोगों के मन में कौन सी ऐसी मूवी है जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले आएगी हैवान, फिर आएगी एंड गेम, फिर आएगी दृश्यम 3, फिर आएगी बहुत सारी मूवीज और भी। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाने चलेंगे और उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: सो टुडे देयर वाज अ हेडलाइन इन न्यूज़पेपर के हमारे फरीदाबाद में कूड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: बिल्कुल, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। बट एक ये जो चीज है ना, कूड़ा सफाई नहीं हो रही है फरीदाबाद में, इसको सुनने के बाद ना दिल टूट सा जाता है कि हमारा फरीदाबाद कभी एक स्वच्छता के मामले में आगे रहता था और अब पीछे जाते जा रहा है, पीछे जाते जा रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वीडियोस भेज सकता हूँ। लाइक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा कि सफाई कर्मचारी की सफाई कर रहे हैं। बट काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो हॉटस्पॉट बन चुकी है। हॉटस्पॉट पता है आप लोगों को क्या होता है? मतलब उस जगह पर कूड़ा आपको रोज दिखाई देगा। मतलब वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि आज डलेगा तो कल वो साफ हो जाएगा। सफाई कर्मचारी आएंगे, वो वहाँ से उठा देंगे। ट्रैक्टर आते हैं, जेसीबी आती है, वहाँ से कूड़ा साफ करके चले जाते हैं। मगर फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर कूड़ा कौन डाल के जाता है? जी हाँ, आम जनता, हम लोग, हम ही हैं जो ये कूड़ा फैला रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, बट जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात यही है कि हमारे फरीदाबाद में अगर गंदगी फैल रही है तो उसके पीछे का रीज़न है कॉमन मैन, और कोई नहीं है। तो चलिए, आप लोगों से बस इतने से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी को भी कूड़ा फेंकते हुए देखते हैं ना, तो उसको देखिए डांटिएगा मत, क्योंकि डांटने से कुछ होगा नहीं। उसको समझाइए कि भाई ऐसा मत कीजिए, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी को एंजॉय करते जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया गाने चलते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सुबह और शाम दोनों ही हंसी हो जाती है जब ऐसे गाने सुनने को मिलते रेडियो महारानी पर।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी पर। रक्षाबंधन वाले दिन भी देखो आपसे बात करने के लिए मैं बैठा पड़ा हूँ बहुत देर से, ऑलमोस्ट 4 घंटे होने वाले हैं, 3.5 घंटे होने वाले हैं और टाइम हो रहा है इस टाइम 8:20 मेरी स्टूडियो क्लॉक में। एंड इसी के साथ साथ अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगा और वो ये, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कचरे के बारे में बात कर रहा था, फरीदाबाद में भड़ गया है, तो पता है मेरे पास ना एक ऑनलाइन रील आई और वो रील काफ़ी कमाल की थी। वो रील ये बता रही थी कि आप लोग ना वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट शुरू कर सकते हैं। अब वो वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट के बारे में जब मैंने और पढ़ा तो मुझे पता लगा कि हाँ, जितनी भी प्लास्टिक बॉटल्स होती है, पन्नियाँ होती हैं और जितने भी प्लास्टिक के वेस्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे एक मशीन के अंदर जाते हैं, मशीन उसको क्रश कर देती है बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर उस टुकड़ों के सारे मिलाकर वो मेल्ट होते हैं, फिर मेल्ट होने के बाद उसके पैलेट्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक पैलेट्स, और उसको भी बेच सकते हैं। दूसरा तरीका ये था कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होता है हम लोग मार्केट से उठाते हैं, उन सबको क्रश किया जाता है एक साथ और हीट ट्रीटमेंट करके उनकी टाइल्स बनाई जा रही है और वो यूज में ली जा रही है। तो वेस्ट टू वंडर्स काइंड ऑफ दिस थिंग। और इसमें ये भी करा जा रहा है कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो सड़कों पर मिलता है, जो सड़कों पर पड़ा रहता है, अक्सर आम गंदगी जिन्हें हम प्लास्टिक की गंदगी कहते हैं, जो कहते हैं रिसाइकलेबल नहीं है, तो उससे आज की डेट में प्लास्टिक के बेंच बनाए जा रहे हैं जो अपने पार्क्स के अंदर लगे होते हैं ना, बेंच जो लोग तोड़ देते हैं कभी कभार, तो वैसे वाले बेंचेस भी बनाए जा रहे हैं एंड प्लास्टिक के चेयर और टेबल्स भी बनाई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो आगे ना रिसाइकलिंग वाली चीज ना बहुत ज्यादा चलने वाली है आने वाले टाइम में, तो अभी से जिसने इसमें इन्वेस्ट कर लिया ना वो बहुत कुछ कर जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत है और बिजनेस में रिस्क है तो ही इश्क है, ये तो बहुत पुरानी लाइन है ना। तो मैं बस आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग सोच रहे हो कुछ नया बिजनेस करने का तो इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये प्यारा वाला गाना 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: क्या आप लोग भी रेगुलर जिम जा रहे हो फिर भी पतले नहीं हो पा रहे? क्या आप लोग भी रेगुलर जिम जा रहे हो मगर मसल्स गेन नहीं कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आपके रूटीन में है या फिर आपके डाइट इंटेक में हो सकती है, क्योंकि हर कोई कंप्लेन कर रहा है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है। जो गाना मैंने चलाया था उसका नाम था अनस्टॉपेबल, और मेरे कहने पर ना एक बार इस गाने की वीडियो जरूर देखना। जिन लोगों को वेट लॉस करना है ना वो लोग तो जरूर देखना इस गाने की वीडियो को। अनस्टॉपेबल सर्च करना यूट्यूब पे एंड ये वीडियो पूरी की पूरी कम्प्लीटली देखना, एंड इससे आप लोगों को मोटिवेशन जरूर मिलेगी। खैर, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो ये थी कि क्या आप लोग भी रेगुलरली जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम नहीं बेचारे वर्कआउट कर रहे हैं, एंड आप लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर आप लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो यू नीड टू कैलकुलेट योर मैक्रोज। मैक्रोज मीन्स, अगर मैं सिंपल लेमन शब्दों में बताऊँ ना, आप लोग क्या खा रहे हैं उस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, कैलोरी डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स डेफिशिएंट, आप लोगों को कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको 300 कैलोरीज ज़रूरत है तो आप एक समोसा खा लोगे, नहीं खाना है समोसा। भले ही मौसम कितना ही ज़्यादा करवट ले ले, बारिश ही क्यों ना हो जाए, ठंडी ज़्यादा क्यों ना पड़ जाए, गर्मी बिल्कुल बेहाल क्यों ना कर दे, बट समोसा नहीं खाना है। 300 कैलोरीज होती है एक समोसे में, सोचिए। और वहीं पर आपको 300 कैलोरीज कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा सैलेड खाना पड़ता है। तो बस आप लोगों से ये बोलूँगा कि डाइटिंग का मतलब होता है जस्ट ईट राइट। हाँ, खाना छोड़ना नहीं होता डाइटिंग का मतलब। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग ना अपने मैक्रोस कैलकुलेट कीजिए कि आप लोग क्या खा रहे हैं, क्या इनटेक कर रहे हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए। खासकर जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उन लोगों को बोलूँगा अपनी बॉडी का सैचुरेशन पॉइंट देखिए कि क्या आपको लगता है आपका वेट 65 पहुंच गया, उसके ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर कुछ दिन का रेस्ट दीजिए बॉडी को, और फिर उसके बाद अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, प्रोटीन इंटेक भी इंक्रीज कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि बॉडी में असर आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी जिम ब्रो की आज की टिप, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर चलेगा आपके लिए ये गाना वशीकरण। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.9।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

तो ऑल टोटल एक बात पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से कि आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया? नहीं नहीं, मेरा तो बहुत ही अमेजिंग गया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हो गई आज, जेबें भी ढीली हुई है, मेरी भी हुई है, काफी सारी और भाइयों की भी हुई होगी। एंड मैं स्टार्टिंग में भी एक बात बोल चुका था कि सरहद पर वो भाई भी खड़े हैं जिन्होंने अपनी बहन से इस साल राखी नहीं बंधवाई क्योंकि वो सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ है उनको भी और हैट्स ऑफ उनकी बहनों को भी। बट हाँ, एक और चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को राखी ना अपने सड़कों को भी बांधनी चाहिए, अपने पेड़ों को भी बांधनी चाहिए, अपने घर के आसपास हर चीज़ को बांधनी चाहिए, क्योंकि हमें ही उनकी रक्षा करनी है। और रक्षा करना मतलब ये नहीं सिर्फ प्रोटेक्शन, उनकी केयर करना भी रक्षा करना है। जैसे कि अगर हम लोग अपने आसपास की भी सफाई रखें तो भी वो केयर ही होती है। और मैं तो बस इतना कहता हूँ कि सिर्फ अपने घर के आसपास की सफाई रखनी है, अपने घर के आगे और उससे थोड़ी सी और आगे तक, मतलब घर के आगे जो रोड है ना, बस वहाँ की सफाई कीजिए। और मैं काफ़ी बार ना ये चीज़ देखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये कि गली वाले ना आपस में लड़ने लग जाते हैं। और उनमें से हमारी गली में एक आंटी जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन आंटी ने अपने घर के बाहर से सारा कूड़ा उठाया और दूसरे के घर के बाहर जाके फेंक दिया। ये मेरे सामने की बात है अभी संडे की। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इन सब में कुछ नहीं रखा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ साथ अपने फरीदाबाद को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में हेल्प कीजिए। एंड आप सभी को पता है H1N1 के केसेस बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं, वायरल फीवर भी ऑन द वर्ज है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ख्याल रखिए क्योंकि मौसम तो बिगड़ रहा है ना मेरे दोस्त, और मौसम बिगड़ेगा तो दिक्कत तो होगी। और इसी के साथ साथ सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आज वैसे ही मुहूर्त बहुत सुबह सुबह का था एंड मुहूर्त से याद आया, मेरा भी घर जाने का मुहूर्त हो गया है, मतलब निकलने का टाइम हो गया है। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आप सभी से फिर से कब, अब तो सीधे मंडे की शाम को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, सायोनारा, सी यू सून, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ।

0: बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिलौती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम टू रिव्यू अड्डा, जहां मूवी सिर्फ देखी नहीं जाती, उनकी कहानी, उनके कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस को थोड़ा खुलकर समझा जाता है। मैं हूं आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और आज का रिव्यू अड्डा थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन के मौके पर मैं आज बात करूंगी उन फिल्मों की जिनके सेंटर में एक ऐसा रिश्ता जिसे किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं, भाई बहन का बॉन्ड। तो आज के 3 घंटे, 3 मूवीज और अलग अलग शेड्स ऑफ सिबलिंग लव। कहीं भाई अपनी बहनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, कहीं एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए इम्पॉसिबल मिशन पर निकल पड़ती है, और कहीं भाई बहन एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। तो पहले घंटे की शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टार रक्षाबंधन से। 2022 में आई ये फिल्म सीधे इसी रिश्ते को अपना सेंटर बनाती है, एक भाई, उसकी 4 बहनें और उनके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमोशन और फैमिली वैल्यूज के भरोसे ये फिल्म एक सॉलिड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन पाती है। चलिए खोलते हैं पहला रिव्यू, स्टे ट्यून, क्योंकि रिव्यू अड्डा अभी शुरू हुआ है। स्टे ट्यून, गाने का वक्त है, इसके बाद करेंगे रक्षाबंधन का प्रॉपर रिव्यू।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं हूँ आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की स्टोरी की। फिल्म में अक्षय कुमार बने हैं लाला केदारनाथ, एक ऐसा भाई जिसके लिए उसकी चार बहनें सिर्फ फैमिली नहीं बल्कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी अपनी जिंदगी पीछे छूट जाती है क्योंकि उसका सबसे बड़ा मिशन है अपनी बहनों की शादी करवाना और उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना। और यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाती है, क्या प्यार सिर्फ प्रोटेक्ट करने का नाम है या अपने लव्ड वंस को अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने की फ्रीडम देना भी उतना ही जरूरी है। फिल्म का इमोशनल कोर काफी क्लियर है। भाई बहनों के बीच फाइट है, प्यार है, टीजिंग है, शादी ब्याह की परेशानियां हैं और मिडिल क्लास फैमिली प्रेशर भी है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म सिर्फ भाई बहन के रिश्ते की कहानी नहीं रहती, ये सोसाइटी के उन एक्सपेक्टेशंस को भी टच करती है जिसमें बेटियों की जिंदगी को लेकर फैमिली पर एक अलग तरह का प्रेशर बना रहता है। और यहीं से रक्षाबंधन थोड़ा सा ज्यादा लेयर्ड हो जाती है। स्टे ट्यून्ड, वक्त है गाने का। वापस आते हैं तो बात करेंगे परफॉर्मेंसेस की और इमोशंस की।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: एयर पॉल्यूशन का लंग्स पे काफी सीरियस असर हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हवा में जो पॉल्यूशन है वो हमारी हर सांस के साथ हमारे नाक को और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करते रहती है, अंदर पॉल्यूटेड एयर घुसते रहती है। तो अगर पॉल्यूटेड एयर लगातार आपके फेफड़ों में घुसती है तो आपका अस्थमा बिगड़ सकता है, आपको COPD नाम की बीमारी हो सकती है, और साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक बीमारी लंग कैंसर होने के चांस भी एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमें सबसे जरूरी बात ध्यान देने की है कि एयर पॉल्यूशन आपके सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि अगर पार्टिकुलेट मैटर काफी छोटे होते हैं तो आपके फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को और बॉडी के लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें पॉल्यूटेड एयर में जाने से पूरी तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। थैंक यू
0: डॉक्टर।

0: वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं हूं आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना फैमिली ड्रामा अधूरा है, परफॉर्मेंसेस। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक ऐसे भाई के रूप में नजर आए हैं जो अपनी बहनों की खुशी के लिए खुद की प्रायोरिटीज को पीछे रख देता है। अब इनका कैरेक्टर कई बार ओवर प्रोटेक्टिव लगता है, लेकिन उसी ओवर प्रोटेक्टिवनेस में फिल्म का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट भी छिपा हुआ है। चार बहनों के साथ इक्वेशन फिल्म को काफी लाइवली बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ सिबलिंग्स की तरह यहां सिर्फ इमोशनल मोमेंट्स नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स है, नोकझोंक है, इरिटेशन है, और वो वाला प्यार भी जिसमें कोई सामने से बोलेगा नहीं लेकिन जरूरत पड़ते ही सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। और भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर भी कहानी को सिर्फ रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं रखता। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो आपको आपके अपने घर की याद दिलाने की कोशिश करती है। वो सिबलिंग फाइट्स, वो पेरेंट्स का प्रेशर, वो शादी की बातें, वो फीलिंग्स की भाई बहन चाहे कितना भी लड़ लें लेकिन बाहर वाला कुछ बोले तो दोनों एक ही टीम हो जाते हैं। यही फीलिंग इसे रक्षाबंधन स्पेशल बनाती है। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का।
1: Carnival, the last ride, King.

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 एफएम, जहां मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

0: रिव्यू अड्डा में आपके साथ गीत हूँ और आज रक्षाबंधन है, तो अब हम बात करेंगे रक्षाबंधन फिल्म के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो क्या ये परफेक्ट फैमिली फिल्म है? शायद नहीं। फिल्म कई जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है, कुछ पोर्शंस थोड़े प्रीची फील होते हैं, इमोशंस मोमेंट्स को कभी कभी बहुत जोर देकर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप रक्षाबंधन पर एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें फैमिली, सिबलिंग्स, इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टेज पर हो, तो इसका कनेक्ट समझ आता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी कोई ट्विस्ट नहीं है, इसकी यूएसपी है वो बेसिक इमोशन, मेरी बहन खुश रहे, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और शायद इसी वजह से रक्षाबंधन के ओकेजन पर ये फिल्म अपने टाइटल की वजह से नहीं, अपनी थीम की वजह से भी फिट बैठती है। तो मेरी तरफ से रक्षाबंधन को मिलते हैं 3 out of 5 इमोशनल राखीज। पहले घंटे की फिल्म यही खत्म होती है, लेकिन रिव्यू अड्डा नहीं, क्योंकि अगले घंटे अब कहानी थोड़ी सी पलटने वाली है, क्योंकि अब भाई नहीं एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए पूरी दुनिया से भिड़ेगी। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का, तो मिलते हैं थोड़ी देर में रिव्यू अड्डा पर।
1: Plate is a myth when the rent is due, but hunger is home. It hurts straight in the ribs when I suffer alone. My stomach be yelling louder than my prayers at night. My mind telling me to quit, I'ma take the advice. Mama prayed for the light while I'm restraining the spark. Pops worked through the dark, but now I'm breaking his heart. I sense the disappointment in the words they utter. Teardrops that weigh tons come from hurting mothers. Hate what I see in the mirror, I'm the cause for the shame. Reflections on my failures always calling my name. Metal shackles are the only inheritance of the firstborn. Add to the trauma, so I carry the curse on. Masking the emptiness, my smile is a prop.

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। अभी हमने थोड़ी ही देर पहले ये जाना था कि कैसे एक भाई अपनी बहन के लिए लड़ रहा था। अब इक्वेशन रिवर्स करते हैं क्योंकि अगली फिल्म में एक बहन अपने भाई के लिए लड़ती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिगरा। आलिया भट्ट प्लेस सत्या, एक प्रोटेक्टिव सिस्टर, और वेदांग रैना है उसका छोटा भाई अंकुर। कहानी अब पूरी तरह से इंटेंस हो जाती है जब अंकुर एक फॉरेन कंट्री की जेल में फंस जाता है और सत्या उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। और यहाँ रक्षाबंधन का इमोशन थोड़ा सा बदल जाता है। ये सिर्फ भाई मेरी रक्षा करेगा वाली कहानी नहीं है, कहती है कभी कभी बहन भी भाई की ढाल होती है। तो चलिए देखते हैं जिगरा ने सिबलिंग लव को एक्शन थ्रिलर के साथ कितना इफेक्टिवली ब्लेंड किया है। स्टे ट्यून्ड, गाने का वक्त है, इसके बाद करेंगे जिगरा का रिव्यू।

सिंपल है, मैं उसे निकालूंगी बस, नो प्लान बी, नो इजी वे आउट। और यहीं से फिल्म एक इमोशनल सिबलिंग स्टोरी से सर्वाइवल मिशन बन जाती है। सत्या की जर्नी हमें ये दिखाती है, जब किसी अपने की बात आती है ना, तो इंसान अपनी लिमिट्स कितनी दूर तक पुश कर सकता है। और शायद इसी वजह से जिगरा राखी के लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच बनती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती है। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का, लौट कर बात करेंगे आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस के बारे में।

Hi, I'm Dr. Shweta Mendiratta. मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी।

पर मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स है, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन, बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट लाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है।

0: वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं आपके साथ गीत हूँ। अब बात करते हैं जिगरा की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स आलिया भट्ट एस सत्या। सत्या कोई कन्वेंशनल हीरोइन नहीं है, वो वल्नरेबल भी है, एंग्री भी है, स्कैर्ड भी है, लेकिन जब भाई की बात आती है तो उसका फियर पीछे चला जाता है। आलिया का परफॉर्मेंस इसी कॉन्ट्रडिक्शन पर टिकता है। वो हर सीन में लाउड नहीं होती, कई मोमेंट्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि उनके कैरेक्टर के अंदर कितना प्रेशर चल रहा है। वेदांग रैना भी अंगूर के रूप में उस वल्नरेबिलिटी को बैलेंस करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज नहीं करती, बल्कि उसे कॉम्प्लिकेटेड, प्रोटेक्टिव और इमोशनली मेसी रहने देती है, क्योंकि असली भाई बहन का रिश्ता भी तो ऐसा ही होता है ना। अगर आप एक दूसरे को इरिटेट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, महीनों बात ना करें, लेकिन किसी क्राइसिस में सवाल नहीं पूछा जाता तुम डिजर्व करते हो या नहीं, बस साथ खड़े हो जाते हो। स्टे ट्यून, क्योंकि वक्त है गाने का। अब हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जिगरा के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में।
1: कार्निवल, द लास्ट राइड, किंग।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा में आपके साथ गीत हूँ। अब जिगरा को देते हैं हमारा फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड राखी फैमिली एंटरटेनर ढूंढ रहे हैं तो जिगरा शायद वैसी फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप सिबलिंग बॉन्ड को थोड़ा इंटेंस, डार्क और एक्शन पैक्ड तरीके से देखना चाहते हैं देन दिस वन डेफिनेटली ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट। फिल्म का इमोशनल आइडिया स्ट्रॉन्ग है, एक बहन अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ती। कुछ पोर्शंस आपको ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे, कुछ जगह पेसिंग थोड़ी अनइवन महसूस हो सकती है, लेकिन सत्या का डिटर्मिनेशन फिल्म को कैरी करता है। मेरे लिए जिगरा की सबसे बड़ी जीत ही इसका पर्सपेक्टिव है, क्योंकि रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई बहन की रक्षा करेगा, कभी बहन भी लड़ सकती है, तो चिंता मत कर मैं हूं ना ये भी कह सकती है। और ऑनेस्टली यही फिल्म का सबसे ब्यूटीफुल इमोशन है। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का। रिव्यू अड्डा के तीसरे घंटे में हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जहां भाई बहन सिर्फ सिबलिंग नहीं बल्कि एक दूसरे के बिगेस्ट एलाइज भी हैं। तो वक्त गाने का है।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। अब तक हमने जाना है, एक भाई अपनी चार बहनों की जिंदगी को लेकर परेशान है और एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है। अब तीसरे घंटे चलते हैं एक लग्जरी क्रूज पर, लेकिन बिलीव मी, यहाँ भी फैमिली ड्रामा की कमी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ जोया अख्तर की दिल धड़कने दो, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा प्ले सिबलिंग कबीर और आयशा, और इन दोनों का बॉन्ड शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे मॉडर्न वर्जन है। नो मैं तेरा प्रोटेक्टर, तू मेरी प्रिंसेस, नॉनसेंस। ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स, थेरेपिस्ट, पार्टनर इन क्राइम और रियलिटी चेक्स हैं, और इसी वजह से ये फिल्म रक्षाबंधन स्पेशल के लिए इंटरेस्टिंग चॉइस बन जाती है। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है रिव्यू अड्डा।

वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं गीत आपके साथ हूँ और अब बात करते हैं कबीर और आयशा की फिल्म दिल धड़कने दो के बारे में। ये शायद उन भाई बहनों में से एक हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल हम जैसे हैं, फाइट है, सरकाजम है, एक दूसरे की खिंचाई है, लेकिन साथ ही साथ एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग भी है। आयशा अपनी पर्सनल लाइफ में स्टक है और कबीर खुद अपनी आइडेंटिटी और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के बीच उलझा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, जब पूरी फैमिली आयशा को समझ नहीं पाती, कबीर उसकी साइड को समझता है, और जब कबीर खुद कंफ्यूज होता है, आयशा उसे रियलिटी चेक देती है। यानी ये रिश्ता प्रोटेक्शन से ज्यादा सपोर्ट पर बेस्ड है, और शायद आज की जेनरेशन के लिए रक्षाबंधन का यही सबसे रिलेटेबल वर्जन है। हर भाई को अपने बहन की लड़ाई खुद नहीं लड़नी होती, कभी कभी बस इतना कह देना काफी होता है, व्हाटएवर हैपेंस आई हैव गॉट यू बैक। स्टे ट्यून, गाने का वक्त है, वापस लौटेंगे परफॉर्मेंसेस और केमिस्ट्री के बारे में।

नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट सर्वोदय सेक्टर 8। जैसे कि आपने सही कहा कि 6 महीने के बच्चों के लिए सबसे आइडियल और कंप्लीट न्यूट्रिशन इस मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। और ये सही कहते हैं कि लोग की माँ का दूध बेस्ट है। साइंटिफिकली इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मदर्स मिल्क में सारी चीजें जो बच्चे के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं स्टार्टिंग के 6 महीने में वो पर्याप्त मात्रा में हैं। मदर्स मिल्क में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता और उसके कण भी हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी भी है, और जिस क्वांटिटी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स अवेलेबल हैं वो बच्चे के द्वारा आसानी से पचाए जा सकते हैं। साथ साथ में बच्चे की दिमाग और बच्चे की आंखों के विकास के लिए और पूर्ण विकास के लिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क। एंड जैसे आपने कहा कि सिर्फ एज ग्रुप में बच्चे को मिल्क ही काफी होता है, ये सही कह रहे हैं आप कि 0 से 6 महीने के बच्चे में सिर्फ मदर्स मिल्क ही देना होता है। और पानी देना चाहिए या नहीं, खासकर जब मौसम चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है, काफी पेरेंट्स का कंसर्न ये रहता है, तो 6 मंथ्स तक पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो बच्चे की नीड के लिए अप्रोप्रिएट होता है। तो सिर्फ मदर्स मिल्क ही इम्पॉर्टेंट है 0 to 6 months में, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई टॉप फीड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई घुटी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बस एक ही कंडीशन होता है, अगर बच्चा बीमार है तो सिर्फ दवाइयां या ORS वो आप दे सकते हैं 6 महीने से कम के बच्चे में, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क ओनली। डॉक्टर

के साथ। वेलकम बैक टू रिव्यू अड्डा, मैं आपके साथ गीत हूँ और हम बात कर रहे हैं फिल्म दिल धड़कने दो के बारे में। रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की सिबलिंग केमिस्ट्री इस फिल्म की स्ट्रॉन्गेस्ट चीजों में से एक है। इनका बॉन्ड स्क्रिप्टेड भाई बहन जैसा कम और जेन्युइनली लिव्ड इन रिलेशनशिप जैसा लगता है। रणवीर का जो कबीर है वो प्रिविलेज्ड फैमिली का बेटा है, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसकी जिंदगी है क्या। प्रियंका की आयशा इमोशनली मैच्योर दिखती है, लेकिन उसकी ओन लाइफ में परफेक्टली सॉर्टेड नहीं है, और यही चीज इस रिलेशनशिप को रियल बनाती है। क्योंकि भाई बहन हमेशा एक दूसरे के सेवियर नहीं होते, कभी कभी खुद मेस्ड अप होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को संभाल लेते हैं, और यही दिल धड़कने दो का सिबलिंग बॉन्ड है। लेस मेलोड्रामा, मोर अंडरस्टैंडिंग। राखी के ओकेजन पर अगर आप एक ऐसी फिल्म चाहते हैं जिसमें भाई बहन की रिलेशनशिप मॉडर्न, फनी और इमोशनली लेयर्ड लगे, दिस वन डेफिनेटली डिजर्व अ वॉच। स्टे ट्यून, वक्त है गाने का। अगला लिंक होगा फाइनल वर्डिक्ट का, तो कहीं जाइएगा नहीं।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी, और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो
2: मीना। मीना

0: प्री-लोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा,

शो है रिव्यू अड्डा, मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। और अब वक्त है आज के रक्षाबंधन स्पेशल के ग्रैंड फिनाले का। 3 घंटे हमने देखे सिबलिंग लव के 3 अलग वर्जन। रक्षाबंधन ने दिखाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेक्रीफाइस, जुगला ने दिखाया प्रोटेक्शन की पावर, लेकिन इस बार बहन बनी भाई की शील्ड। और दिल धड़कने दो ने दिखाया एक मॉडर्न सिबलिंग रिलेशनशिप, जहां भाई बहन एक दूसरे के प्रोटेक्टर से ज्यादा पार्टनर्स और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तीनों फिल्म की स्टोरीज अलग हैं, ट्रीटमेंट अलग है, इमोशन अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, भाई बहन कितने भी बड़े हो जाएं, उनके बीच का एक हिस्सा हमेशा बच्चा रहता है। वो बचपन की लड़ाइयां, रिमोट के लिए फाइट्स, एक दूसरे की शिकायतें, मम्मी पापा से चुगली और फिर उसी इंसान के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला प्यार। शायद इसीलिए राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, इट्स अ रिमाइंडर। लाइफ चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मेरा एक इंसान जो हमेशा मेरी साइड पर रहेगा। तो आज के रिव्यू अड्डा रक्षाबंधन स्पेशल में मेरी तरफ से तीनों फिल्मों का वर्डिक्ट यही है, अगर आपको प्योर फैमिली इमोशन चाहिए देन रक्षाबंधन, अगर आपको चाहिए इंटेंस सिबलिंग लव प्लस एक्शन देन जिगरा, और अगर चाहिए मॉडर्न रियल रिलेटेबल ब्रदर सिस्टर केमिस्ट्री देन दिल धड़कने दो। मैं आपके साथ गीत हूं और ये था रिव्यू अड्डा सिर्फ रेडियो महारानी 9.6 पर। तो अब मुझे दीजिए आज के लिए परमिशन, लेकिन जाने से पहले अपने भाई या बहन को एक कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिव्यू तो हम हर वीकेंड करेंगे, लेकिन कुछ रिश्तों को रिव्यू की नहीं बस एक आई एम देयर फॉर यू की जरूरत होती है। स्टे ट्यून्ड, गाने का वक्त है रिव्यू अड्डा में। मैं आपके साथ गीत थी, साइनिंग ऑफ।

0: कॉलिंग।
1: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीजें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का 3रा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका।